ये लीजिए, आ गए, आपने बुलाया, हम चले आए। 10:24 का वक्त और प्रोग्राम चल रहा है सुपर हिट सॉन्ग्स। और ये जो म्यूजिकल ट्रैक अब आने वाला है, इस मूवी का नाम है जानी दुश्मन। अपने टाइम का सबसे सुपर हिट ट्रैक रहा है और इसके साथ ही आजकल रील्स में तो एकदम वायरल हो रखा है इसका अंतरा। कौन सा वो ट्रैक है, इसका कौन सी वो लाइन्स है, इसकी, इसको जानने के लिए सुनते रहिए सुपर हिट सॉन्ग्स विद द लार्ज एंड निखिल।

मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

Yes, Rafta Rafta Medley from the movie Yamla Pagla Divana फिर से 10:47 का वक्त और प्रोग्राम चल रहा है सुपर हिट सॉन्ग्स और लगातार जैसे कि एक से बढ़कर एक म्यूजिकल ट्रैक्स आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में एक और प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक फ्रॉम द मूवी वाह लाइफ हो तो ऐसी सो स्टेडियो नैन स्टे म्यूजिकल विद लार्जे निखिल सुरो का लखनवी ऐसा

आपका और हमारा रिश्ता पुराना है और बहुत पुराना है। 10:57 का वक्त हो रहा है और प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग्स को यहीं पर वाइंड अप करने का टाइम है, लेकिन ये म्यूजिकल ट्रैक आपके साथ बना रहेगा। इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद आप सुनेंगे FM समाचार और उसके बाद प्रोग्राम आएगा आपका अपना फेवरेट संदेश आपके गीत हमारे, और उसमें आप हमें बहुत अच्छे अच्छे संदेश भेज सकते हैं जो कि हम रेनबो के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-22-38-852 पर या फिर 0522-22-38-845 पर। अगर आपका कॉल ना लगे तो कोई बात नहीं, आप हमें ईमेल लिख भेजिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। आपका दिल आरजे निखिल आपके साथ बना हुआ है, आप सुनते रहिए FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

नमस्कार, सुबह के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है और योगी सरकार के नेतृत्व में हर क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। वस्त्र उद्योग भी प्रदेश के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री कल लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल 2026 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टेक्सटाइल क्षेत्र में भी सरकार और उद्योग के बीच निरंतर संवाद के माध्यम से नई संभावनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता व राज्य मंत्री केपी मलिक की

मौजूदगी में कल लखनऊ में पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन के शासी निकाय की तीसरी बैठक संपन्न हुई। बैठक में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में संरक्षण कार्यों, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटकों के लिए पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के विस्तार सहित 1.96 करोड़ रूपये के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। वन मंत्री ने मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम को लेकर अधिकारियों को निरंतर सतर्क रहने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस रविवार को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कल बताया कि अपने संबोधन में वे विश्व की बदलती बहुध्रुवीय वास्तविकताओं को सामने रखने में ब्रिक्स की भूमिका का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि गुटेरेस इस बात पर बल देंगे कि आज की आर्थिक, जनसांख्यिकीय और भू राजनीतिक वास्तविकताएं 1945 की वास्तविकताओं से भिन्न हैं और ब्रिक्स देश इस बदलती वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित ये शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। श्री डुजारिक ने बताया कि गुटेरेस के प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित अन्य नेताओं की द्विपक्षीय बैठकें होने की भी आशा है। फरवरी में भारत एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ये गुटेरेस की भारत की पांचवीं और इस वर्ष की दूसरी यात्रा होगी। मुजफ्फरनगर के बड़ौत मार्ग पर बुढ़ाना थाना क्षेत्र में कल एक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार 5 लोगों की मृत्यु हो गई। दोनों बाइक तेज गति से जा रही रोडवेज बस की चपेट में आ गई। मृतकों में 3 लोग बागपत के और 2 शामली के रहने वाले थे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सूचनाएं, दृश्य और घटनाएं तो इंसान भूल जाता है, मगर वो ये बात कभी नहीं भूलता कि आपने उसे कैसा महसूस कराया है।
1: FM रेनबो ने अपने सुनने वालों को कुछ ऐसा ही एहसास दिया है जिसे धूमिल कर पाना नामुमकिन है।
0: बदलते वक्त के साथ रेडियो भी बदला, मगर नहीं बदले तो वो एहसास,
1: जैसे बरसात की किसी भीगी रात में FM रेनबो पर बज रहे संगीत को सीने से लगाए सितारों को निहारती किसी युवती के मन के भाव, जो बेहद कीमती है।
0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: हेलो एवरीवन, 11:04 का वक्त और आपका पसंदीदा प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे एक बार फिर से लेकर आ चुका है आपका दिल आरजे निखिल ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां आप अपना संदेश बहुत सारे लोगों तक एफएम रेनबो के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए आपको बस करना है एक काम, अपना मोबाइल नंबर मोबाइल फोन उठाना है और हमें जल्दी से कॉल करना है 0522-2238-852 या फिर 0522-2238-845 यानी कि 0522-2238-852 या फिर 0522-2238-845 पर। हमारी फोन लाइन्स ओपन हैं और लोग भी लगातार कॉल कर भी रहे हैं, तो आप देर मत कीजिए, जल्दी से हमें फोन कॉल करिए और अपना मैसेज हम तक, हमारे जरिए तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपका फोन कॉल नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमें ईमेल लिख भेजिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। और हमारे साथ फोन लाइन पर भी कोई जुड़ चुका है। हेलो,
1: हम आपके, हेलो
0: जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं।
1: हेलो,
0: हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है रेनबो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, रेनबो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, हम आपको अपना बना लेंगे, हम आपके हर गमों को पहचान लेंगे।
0: जी,
1: हम आपको अपना बना लेंगे, हम आपके हर गमों को पहचान लेंगे। कितनी भी तेज बारिश में आप चल रहे हो, कितनी भी तेज बारिश में आप चल रहे हो।

0: फिर भी हम आपके आंसुओं को पहचान लेंगे, फिर भी हम आपके आंसुओं को पहचान लेंगे।
1: क्या बात कही आपने, बस आप अपनी बात पे कायम रहिएगा। किसी के आंसुओं को पहचानना यह सबसे बड़ी बात होती है, उसका हमदर्द बनना यह उससे भी बड़ी बात होती है। फिलहाल आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि प्लीज रेडियो सेट से दूर हो जाएं, क्योंकि रेडियो सेट की आवाज भी पलट कर आ रही है आपकी तरफ से, तो ईको हो रहा है। फिलहाल आपका गुड नेम क्या है, जरा प्यार से बताइए।
0: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, और बताइए आप कैसे हैं और आज इतने दिनों के बाद क्यों आए हैं, कहाँ गए थे?
1: भाई बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन हम नहीं रहते तो कोई बात नहीं, हमारे बहुत सारे साथी मौजूद रहते हैं, आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं।
0: लेकिन आपको भी आना चाहिए, आज काफी दिनों के बाद आप आए हैं और आपसे काफी दिनों के बाद बात हो रही है आज।
1: जी जी फिलहाल ये बताइए, हमारा जो प्रोग्राम है संदेश आपका गीत हमारा, तो बताइए क्या संदेश रहेगा आज आपका?
0: आज का संदेश हमारा ये है सर, बारिश आजकल बहुत ज्यादा हो रही है
1: फिलहाल,
0: और
1: तो धूप की
0: मच्छर बहुत
1: स्थिति है।
0: ज्यादा पनकते हैं।
1: जी
0: अपना अपना सब लोग ख्याल रखें,
1: जी
0: बस यही मैसेज है।
1: किसी का नाम लेना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, नाम लेना चाहेंगे
1: जरूर।
0: दिल आरजे निखिल हो गया नाम।
1: चलिए बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: ओके बाय।
1: तो देखा दोस्तों आपने, किस तरह समान सारी जी ने कॉल किया, अपनी दिल की बात रखी और साथ में उन्होंने ये मैसेज बताया कि किस तरीके से बारिश में आपको बच के रहना है। बारिश नहीं हो रही, अब धूप हो रही, फिर कल को बारिश हो सकती है, मौसम अदल बदल रहा है, तो मौसम से थोड़ा सा सावधान रहना है, अपना ध्यान रखना है। फिलहाल 11:07 पे बहुत सारे लोगों के भी कॉल आ रहे हैं, तो उनके भी कॉल रिसीव करेंगे, ऑन एयर हम बात भी करेंगे, लाइव बात करेंगे उनसे, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो प्लीज fmakashwani@gmail.com पर हमें मेल लिख भेजिए, और कॉल नंबर है हमारे 0522-223-8852 एंड 0522-223-8845, यानी कि 0522-2238-852 और 0522-2238-845।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: जय दोस्तों, FM रेनबो सुन रहे हैं, 11:13 का वक्त और प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे विद्युत दिलार जेनिक है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कॉल हम तक आ रहे हैं अपना अपना संदेश पहुंचाने के लिए, तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है आइए जानते हैं। हेलो, रमेश जी रेनबो में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे हैं आप? सर प्लीज थोड़ा सा तेज बोलिएगा।
6: आप कैसे हैं?
5: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? FM सुन रहे हैं। और वैसे आप क्या करते हैं?
6: खेती करते हैं सर।
5: खेती करते हैं, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो कौन सी फसल इस वक्त लगा रखी है आपने?
6: जी सर धान है, उसके बाद राई की तैयारी कर रहे हैं।
5: अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप फसल उगा रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक आपका ये जो अन्न है पहुंचता है, सबका पेट भरता है, अन्नदाता हैं आप, तो एक बहुत ही अच्छी बात है और आपको हम अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए। फिलहाल ये बताइए आपका संदेश क्या रहेगा आज का?
6: जी सर संदेश ये है, कुछ लोग बाइक चलाते हैं, जो साइकिल से लोग जाते हैं उनकी देखभाल नहीं करते।
5: जी
6: उनको जरूर ध्यान, देखते हैं बगल में कचरा भरा हुआ गाड़ी रहे सर।
5: जी
6: ध्यान नहीं देते।
5: बिल्कुल सही बात है, ध्यान देना चाहिए भाई, अगल बगल कौन जा रहा है ये देख करके हमें बाइक चलानी चाहिए या कार चलानी चाहिए, और साथ में ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना चाहिए। सर किसी का नाम लेना चाहेंगे?
6: जी सर सबसे पहले आपको जी सुनने वाले।
5: शुक्रिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो कुछ इन्हीं की तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0522 2238 852 या फिर 0522 2238 845 पर, हमारी फोन लाइंस ओपन है, तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए और हमसे लाइव बात कीजिए और अपना मैसेज हमारे जरिए यानी कि FM रेनबो के जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने हमें मेल किया हुआ है, और मेल करने वाले लोग हैं बाबू अंसारी, मोहम्मद आसिफ, भैया मोनू सेठ,

जी हाँ, ना हम कभी भूलेंगे ना हम कभी दूर जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके रेडियो सेट पर रहते हैं। एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 100.7 एफएम रेनबो विद आरजे निखिल। 11:21 का वक्त हो रहा है और प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, जहां बहुत सारे लोगों के हम तक कॉल पहुंच रहे हैं और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस ओपन हैं और जिनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं 0522-2238-852 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-2238-845 पर। अगर हमारी फोन लाइंस बिजी जा रही हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों के कॉल हम तक आते हैं, तो अगर बिजी जाती है तो आप हमें अपना मेल लिख भेजिए fmakashwani@gmail.com पर। इस मेल में आप अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल जिन लोगों के मेल आए हैं जरा उनकी भी बात कर लेते हैं। और जो मेल आया है, बाबू अंसारी जी का मेल आया है, पूछते हैं सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है और इनका संदेश ये है कि प्रकृति हमें बिना कुछ मांगे हवा पानी और जीवन देती है। आइए पेड़ों की रक्षा करें, पौधों को बचाएं, पानी बचाएं और अपने आसपास स्वच्छता रखें। प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। बाबू अंसारी जी आपने बात बहुत अच्छी लगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात सबको पता होती है लेकिन उसके बाद भी कोई फॉलो नहीं करता है। और लोग कहते हैं कि हमें पेड़ बचाना है, हमें पर्यावरण को अपने बचाना है, जल बचाना है, लेकिन जब वो यूज करने पर आते हैं तो पानी भी खूब यूज करते हैं और जब कोई चीज बनानी होती है तो पेड़ों को भी बड़े आसानी से काट देते हैं। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि जो चीज उनको पता है उस पर अमल तो जरूर से जरूर करें। मोहम्मद आसिफ जी का मेल आया हुआ है, हैदराबाद तेलंगाना से ये सुन रहे हैं और गांव राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी के रहने वाले हैं, हैदराबाद में अपना काम करते हैं, वहीं रहते भी हैं। और इनका संदेश ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का दोबारा से प्रयोग ना करें। ऐसा प्लास्टिक उपयोग जो एक बार ही प्रयोग किया जाता है वो और उसके बाद वो कचरा बन जाता है, उसका उपयोग बिल्कुल ना करें। और हो सके तो अपने पास ऐसी बोतलें रखें जो आपके अनुकूल है, यानी कि जैसे कांच की बोतल या स्टील की बोतल, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मेल के लिए। इसके अलावा ब्रह्मेश जी का भी हमें मेल आया हुआ है टिकैत नगर बाराबंकी से और इस नाम से जो मेल है, मेल किया है पिंकू सोनी जी ने और इनका कहना है कि बेटा और बेटी में फर्क न समझे, क्योंकि बेटी नहीं जन्माओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। पानी की भी बचत करें क्योंकि जल है तो कल है और पेड़ लगाओ तो जीवन बचाओगे। और साथ में इन्होंने कहा है कि पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मेल ऐड करने के लिए। बिल्कुल, हम आपका मेल ऐड करेंगे और आप हमें अगर कॉल करेंगे तो हम आपकी कॉल भी जरूर रिसीव करेंगे और ऑन एयर आपका मैसेज आप ही के जरिए लाइव दिलवाएंगे। इसके अलावा मोनू सेठ जी का भी मेल आया हुआ है, लिखते हैं कि रिश्ते जो दोबारा नहीं मिलेंगे, क्रिकेट वॉलीबॉल में भी बड़े भैया से नोकझोंक हो जाती है, मतलब उनके साथ क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते कभी कभी नोकझोंक भी हो जाती है क्योंकि उनकी टीम बहुत घातक है और हमारी टीम कमजोर है, लेकिन नोकझोंक ये सिर्फ मैदान तक ही बाकी रखते हैं, मैदान से बाहर निकलने के बाद ये फिर से भाई भाई हो जाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, जो काम करें हम बिल्कुल दिल लगी के साथ करें और लेकिन अगर हम रिश्ते में हैं, हम दोस्ती में हैं या फिर हम अजनबी भी हैं तो भी उस पुराने गम को या जो हमारी लड़ाइयां हैं उनको भुलाकर हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। मोनू सेठ जी आपका मेल बहुत ही खूबसूरत और शानदार है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। नरगिस जी का मेल आया हुआ है संडेला डिस्ट्रिक्ट से, हरदोई से मेल कर रही हैं, संडीला से इनका मेल आया हुआ है और गुड मॉर्निंग लिखते हैं। साथ में इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है और संदेश ये देना चाहती है कि सब्र रखो, वक्त सबका आता है, आज आपको जो रुलाता है वही आपके लिए तालियां भी बजाएगा, बस आप सब्र रखिए, हिम्मत रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया नरगिस जी आपके इस मेल के लिए। वकील अहमद जी का भी मेल आया हुआ है और इन्होंने ये कहना कि बारिश होने की वजह से रोड के ऊपर पानी भर जाता है तो उस पानी में जाने के से बचे, क्योंकि जो गड्ढा होता है पानी भरने के बाद में आप उसका आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि वो गड्ढा कितना गहरा है, इसलिए उस पानी में जाने से जरूर बचे। सीतापुर से इन्होंने मेल किया हुआ और नाम लिखा हुआ है साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलशफा सिद्दीकी और अमन नवाब। तो इतने सारे लोगों के हमें मेल आए हुए हैं। अगर आपने भी मेल अभी तक नहीं किया है तो प्लीज FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर हमें मेल लिख भेजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
6: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
7: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
8: जी हाँ, एक बार फिर से आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल, 11:30 का वक्त और प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, जहाँ बहुत सारे लोगों के कॉल हम तक पहुँच रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन जुड़ा है आइए जानते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताइए कैसे हैं आप सर, आपका गुड नेम?
9: मेरा नाम अल्तमश अली है और आप कैसे हैं?
8: हम बहुत अच्छे हैं। तो अल्तमश अली जी, वैसे क्या करते हैं सर आप?
9: पढ़ाई करते हैं।
8: बहुत ही अच्छी बात है पढ़ाई करना, और सबको पढ़ाई करनी भी चाहिए, प्रेरित भी करना चाहिए। वैसे आप किस क्लास में हैं? हाँ जी, हाई स्कूल में हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो बोर्ड्स की तैयारी आप जोरों से कीजिए और अच्छे नंबर लाइए, यही हमारी कामनाएं शुभकामनाएं हैं। फिलहाल क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?
9: संदेश देना चाहते हैं कि और चार बार उसको सोच लेना चाहिए कि फैसला सही है या गलत।
8: बिल्कुल, आपने बात बहुत सही।

0: यही है।
1: बहुत अच्छी लगती है और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आपको हम लोगों के प्रोग्राम पसंद आए, रेनबो पसंद आए, आप उसको सुनते रहे, यही हमारी कोशिश रहती है। फिलहाल जो आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी बात कही है वो बहुत ही अच्छी है, और उसे सबको अपनाना चाहिए कि जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो थोड़ी देर शांत मन से बैठ जाना चाहिए, होल्ड होल्ड कर लेना चाहिए खुद को थोड़ी देर के लिए, फिर सोचना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: सर साहिबा अंसारी और शमा परवीन अंसारी और तालिब अंसारी और फैज अंसारी और आसिफ अंसारी।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतना अच्छा संदेश देने के लिए। 11:31 का वक्त हो रहा है और घड़ी की टिक टिक बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ती जा रही। 12 बजे हमारा ये शो खत्म होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी अगर लाइव हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें प्लीज कॉल कीजिए 0522 2238 852 पर, या फिर 0522 2238 845 पर। इस पर आप हमें कॉल कीजिए और कॉल करके अपना जो मैसेज है वो रेनबो के जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वहां वहां तक जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है। फिलहाल अगर आपका कॉल नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, आप हमें मेल लिख भेजिए fmakashwani@gmail.com पर। तो देर नहीं करनी है, जल्दी से मेल कीजिए, जल्दी से हमें कॉल कीजिए, मैं बैठा हूं आपके मैसेज के इंतजार में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अम्यूज्ड विद द लार्ज निखिल।

दीवान अंसारी जी का हमें मेल आया हुआ है मियागंज जिला उन्नाव से, और इनका संदेश यह है कि अक्सर शादी बारातों में लोग ये करते हैं कि 50 पीस वाले पटाखे छुड़ाने लगते हैं, जो कि लगातार फटते रहते हैं, दगते रहते हैं, और उससे होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को परेशानी होने लगती है। तो इनका ये कहना है कि प्लीज ये ना करें, इससे लोगों को दिक्कतें हो सकती है। खुशी का मौका है, खुशी में रहने दें, उसे दुख में तब्दील ना करें। सावित्री जी जी का मेल आया हुआ है और इन्होंने पूछा है, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। और साथ में लिखा है कि झक्कास बिंदास लल्लन टॉप गाने अच्छे लग रहे हैं, और साथ में इनका ये कहना है सभी लोगों से कि कुछ भी करें साथ में एफएम जरूर सुने, सुरों का लखनिया का एहसास। थैंक यू, बहुत ही अच्छी बात लिखी है आपने। ये तो हम खुद ही सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज रेडियो जरूर सुने, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ जानने समझने सोचने का मौका मिलता है, आपको अपडेट्स मिलते हैं। अनिल कुमार जी का मेल आया हुआ है और इनका संदेश ये है कि नेपाल की मदद करें, जो बाढ़ आई थी उससे सब लोग बहुत दुखी है, परेशान है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, तो हमें उनको कुछ कपड़े और पैसे डोनेट करने चाहिए। उनका मैंने भी किया हुआ है, और इनका मेल आया हुआ है हमें चंपावत उत्तराखंड से, अनिल कुमार जी का। आंचल सेठ जी का मेल आया हुआ है रायबरेली से, और जिंदगी में अच्छे दोस्त मिल जाए तो नजरिया अपने आप बदल जाएगा, जैसा कि मेरा आकाशवाणी लखनऊ और मेरे भाई। क्या बात है, इनका ये कहना है, रायबरेली से इन्होंने ये हमें मेल किया हुआ है। इसके अलावा सोनू परवाना जी का भी मेल आया हुआ है, इन्होंने लिखा है कबीर दास जी कहते हैं कि जो किसी की बुराई करे उसे अपने पास आसपास रखना चाहिए, क्योंकि उसकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सॉन्ग्स और प्रोग्राम इनको बहुत पसंद आ रहा है। इसके अलावा गीता जी का और एलिजा खान का, कोमल तिवारी जी का भी हमें मेल आया हुआ है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है बताएंगे सब आपको, लेकिन इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के बाद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जी हाँ, 100.7 FM रेनबो आप सुन रहे हैं। 11:47 का वक्त और प्रोग्राम चल रहा संदेश आपके गीत हमारे, और इसी संदेश को, एक संदेश लेकर हमारे साथ कोई शामिल हो चुका है हमारे इस प्रोग्राम में। हेलो।
5: हाँ सर जी, राधे राधे सर जी।
4: जय श्री राधे, कैसे हैं सर? आपका क्या नाम है और रेनबो में आपका स्वागत है।
5: सर जी, हम ग्राम मुसलमानाबाद कोसवानखेड़ा जिला हरदोई से बोल रहे हैं सर जी।
4: हरदोई से बात कर रहे हैं, आपका अपना नाम बताइए एक बार फिर से।
5: मेरा नाम राधेलाल जी है सर।
4: जी राधे जी, और बताइए कैसे हैं?
5: सर जी ठीक है, आपसे बहुत महीने बाद फोन लगा है हमारा।
4: चलिए बहुत बहुत बधाई हो, आपका फोन लगा और आपकी आवाज़ सुन के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आप सर?
5: सर जी तो हम खाना बनाई थन रही थन, मगर लखनऊ गोमती नगर में खाना बनाई।
4: अच्छा, क्या क्या बना लेते हैं
5: सर जी? जो हमका आवाज जात है, मतलब ज्यादा स्टैंडर्ड खाना नहीं बना पाई थन, यो भाई अपना रोजी रोटी का,
4: मतलब रोजमर्रा का जो खाना है, जो रोज खाते हैं हम लोग, वो आप बनाते हैं, जो कभी कभी खाते हैं वो नहीं बनाते, है ना?
5: जी सर जी।
4: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप पौष्टिक खाना बनाइए, सबको खिलाइए, सबका पेट भरिए और सबको स्वस्थ रखिए, इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है।
5: सर जी, आपका शुभ नाम सर जी का है?
4: मेरा नाम निखिल है।
5: अरे वाह निखिल साहब, बहुत दिनों के बाद बात हुआ है और पहली बार भी हुआ है बात सर जी।
4: चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमसे कोई नया श्रोता जुड़ा हुआ है और बात हुई है हमारी, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनके।
5: अब हम आपका रेडियो सुनते हैं सर जी, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं आप।
4: बिल्कुल बिल्कुल, आपको रेडियो सुनते हैं और
5: सर जी हमारे यंगर साहब हैं, जितने साहब हमारे, जितनी बहनी दीदी
4: जी,
5: पूरी टीम यहाँ जौन है, यो जौन गणेश चतुर्थी आए रहा वही का प्यार भरा गणेश भगवान का हार्दिक शुभकामनाएं।
4: जी जी बिल्कुल, उनको शुभकामनाएं भी सबको, और उनका स्वागत भी करने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। फिलहाल तनी बतावा भैया कि क्या संदेश है आपका?
5: संदेश साहब जी यही है कि मान लो गर्मी, कभी गर्मी पड़त कभी ठंडा पड़त, तो अपने हिसाब से खान पान रखे जिससे मान लो स्वास्थ्य सही रहा है, बढ़िया बढ़िया
4: जी,
5: यह संदेश है साहब।
4: चलिए आप अच्छा बनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं और लोगों के स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं, इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है भाई, सबको अपना जरूर ख्याल रखना चाहिए।
5: लाइन में यहाँ जुड़े हैं उन सबको भी प्यार भरा नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे।
4: और किसी का नाम लेना चाहेंगे
5: सर जी? नाम तो भाई, नाम तो बहुत ऑल इंडिया से फोन आता है तो कहीं कहीं का नाम ले नहीं पाएंगे
4: जी,
5: इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लिए सबको प्यार भरा गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुक्राएं, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, मन आनंदित हो गया।
5: ठीक है सर जी, और राधे राधे।
4: जय श्री राधे। देखिए राधे राधे के साथ में श्री राधे जी ने हमें ये कॉल किया था और कितनी अच्छी तरीके से बात की, मन इंटरटेन हो गया। जिन्होंने भी सुना होगा उम्मीद है उन्हें भी अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं 0522 2238852 पर या फिर 0522 2238852 पर। स्टे ट्यून्ड।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: जी हाँ दोस्तों, 11:54 का वक्त और संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो गया, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि कोमल तिवारी जी का भी हमें मेल आया हुआ है और लिखते हैं कि सितंबर का महीना चल रहा है, बारिश हो रही, गर्मी हो रही है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी बार बार उत्पन्न हो रही हैं, तो अपने आप को जरूर उनसे बचा के रखें, आस पड़ोस में सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें ताकि इन्फेक्शन ना फैले। कोमल जी, आपका ये जो मेल है मैंने पढ़ा और बहुत ही अच्छी बात है और सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। विजेश जी का मेल आया हो बहराइच से और लिखते हैं कि जो लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं ऐसा ना करें, क्योंकि समय है, किसी का भी बदल सकता है। गीता जी का भी मेल आया हुआ है और अलीजा खान जी का, महेंदीपन जी का और अंसारी जी का भी हमें मेल आया हुआ है। तो इतने सारे लोगों को मेल आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मेल के लिए। फिलहाल 11:55 का वक्त हो चुका है, तो अब आपको मैं कहता हूँ टाटा बाय बाय एक प्यारा से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।
3: सीने में दिल,
2: so stay tuned and stay musical with the Dilhar Chinnikil.

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंत जी ने राज्य की शासन व्यवस्था में सुशासन के उच्च आदर्श स्थापित करते हुए सामाजिक, आर्थिक उन्नयन, जन कल्याण एवं राष्ट्रीय हित के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है और योगी सरकार के नेतृत्व में हर क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। वस्त्र उद्योग भी प्रदेश के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री कल लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय यूपी टेक 2026 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टेक्सटाइल क्षेत्र में भी सरकार और उद्योग के बीच निरंतर संवाद के माध्यम से नई संभावनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीलंका की 2 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने आज कोलंबो में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अरविंद डी सिल्वा, सनत जयसूर्या और चामिंडावास से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इन क्रिकेटर के शानदार प्रदर्शन को भारत के लोगों

ने सराहा है। श्री सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरनी अमर सूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। दोनों नेताओं ने आपसी प्राचीन सभ्यतागत संबंधों पर भी चर्चा की और दोनों देशों के बीच मजबूत जन आंतरिक आदान प्रदान को एक अटूट बंधन बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि साझा विरासत होने के नाते भारत और श्रीलंका को क्षेत्र में शांति और समृद्धि तथा लोगों के कल्याण के लिए साझा विकासात्मक दृष्टिकोण की दिशा में काम करना जारी रखना चाहिए। मुजफ्फरनगर के बड़ौत मार्ग पर बुडाना थाना क्षेत्र में कल एक सड़क हादसे में दो बाइक सवार 5 लोगों की मृत्यु हो गई। दोनों बाइक तेज गति से जा रही रोडवेज बस की चपेट में आ गई। मृतकों में 3 लोग बागपत के और 2 शामली के रहने वाले थे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: 26 बरस का साथ है ये, यादों का सतरंगी एहसास है ये।
1: FM रेनबो लखनऊ साथ, दूसरा कोई कहां,
2: म्यूजिक मस्ती मैजिक सब है यहाँ।
0: 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
7: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
6: तो आइए 12-20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7, सुरों का लखनवी एहसास।

हाँ दोस्तों, आप सभी लोग सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो और मैं हूँ आपकी साथी दोस्त शालिनी। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो समर्पित है उन सभी महिलाओं को जो सीखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने साथ अपने परिवार का भविष्य भी बेहतर बनाना चाहती हैं। जी हाँ, अगर हम 8 सितंबर की बात करें तो 8 सितंबर को पूरी दुनिया ने क्या सेलिब्रेट किया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। लेकिन आज हम साक्षरता को सिर्फ पढ़ने और लिखने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि हम बात करेंगे महिला शिक्षा की, आत्मनिर्भरता की, स्वास्थ्य जागरूकता की और खासकर डिजिटल दुनिया में महिलाओं की भागीदारी की। जी हाँ, और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर आपको आज से कुछ नया सीखने का मौका मिले तो आप क्या सीखना चाहेंगे? क्या आप मोबाइल चलाना सीखना चाहेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहेंगे, या अंग्रेजी सीखेंगे, या कोई नया हुनर, या स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी जानकारी, या फिर पढ़ना लिखना? और इतने सारी बातें हैं ना, तो आपके हम जवाब चाहेंगे ईमेल के जरिए। आप हमें मेल करें fmakashwani@gmail.com पर। और हाँ, अगर आप हमसे बात

चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं हमारे साथ, खासकर महिलाएं, तो हमें कॉल कर सकती हैं 0522 2238 852 और 2238 845 पर। जी हाँ, फटाफट अपने अंदर की बात हमसे कह डालिए और हमारा साथ दीजिए प्रोग्राम शत्रुपा में, प्यारे प्यारे गानों के साथ और ढेर सारी बातों के साथ।

0: और देखिए, कहने के बाद तुरंत ही हमारे पास में दो दो कॉल्स आ चुकी हैं और दोनों पे कौन है, क्या बात करना चाहता है, क्या नया सीखना चाहता है, बस तुरंत हम बात करते हैं उनसे। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम बताएं अपना।
1: मैं सुरभि सिंह बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बात हो रही है सुरभि आपसे?
1: जी और बताइए मैम, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून।

0: गुड आफ्टरनून, बढ़िया है। आप कहाँ से बात कर रही हैं? पहले जगह नाम बताइए।
1: मैं हरदोई से बात कर रही हूँ, मुसंदासपुर जिला हरदोई से।
0: बहुत बढ़िया सुरभि। अच्छा बताइए, अगर आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले तो आप क्या सीखेंगी? जैसे कि बात करी हमने, ऑनलाइन बैंकिंग सीखेंगी, अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगी, पढ़ना लिखना चाहेंगी, या कुछ नया?
1: अगर सीखूं नया, अगर मैं सीखना चाहूं तो मैं डांस सीखूंगी, डांस।
0: लेकिन आज हम डांस, सिंगिंग, अपनी हॉबीज की बात नहीं कर रहे, आज हम डिजिटल साक्षरता की बात कर रहे हैं कि क्या आप
1: तो मैं
0: डिजिटल। हाँ,
1: ऑनलाइन बैंकिंग सीखूंगी।
0: अरे वाह, अच्छा कितना जानती हैं ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में आप?
1: अभी मैं मैम ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जब सीखेंगे तो थोड़ा बहुत, तो जब मतलब जब नॉलेज हो जाएगा तो हम सीखना कोशिश करेंगे।
0: अच्छा, अभी आप जो पैसे का लेन देन है वो कैसे करते हो? आप कैश देते हो या मोबाइल के द्वारा करते हो
1: नहीं,
0: डिजिटल?
1: अभी अभी मैम मैं कैश देती हूँ, जैसे अगर किसी को देना होता है तो
0: हाँ,
1: मैं कैश देती हूँ।
0: अच्छा। और जब कहीं पर खरीदारी करने आप जाती हैं तो भी आप कैश पैसे का है, रुपये का?
1: तो भी मैं कैश ही देती हूँ, जैसे कि अगर शॉप पे जाना होता है, कोई सामान लेना होता है,
0: हाँ,
1: 10 रुपए का या 20 रुपए का या 100 रुपए का, तो मैं कैश ही देती हूँ।
0: अच्छा। आपके अंदर कभी ये नहीं जागा कि अब मुझे भी मोबाइल के द्वारा करना सीख लेना चाहिए?
1: जी नहीं मैम, क्योंकि मोबाइल बहुत, जैसे मतलब जितना मजा कैश में होता है देने में,
0: हाँ,
1: उतना मजा मोबाइल में नहीं होता है।
0: अच्छा, केवल मजे के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं।
1: जी
0: अच्छा, चलिए, बहुत
1: जी मैम।
0: अच्छा।
1: और मैम एक
0: हाँ
1: बात और, एक
0: हाँ
1: बात और,
0: हाँ
1: सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगी, हमारी प्यारी सी क्यूट वाली अंजू मैम की तबीयत कैसी है?
0: हाँ
1: वो
0: ये
1: ठीक
0: तो,
1: है?
0: ये सवाल पूछने का तो प्रोग्राम ही नहीं है। आप बिल्कुल
1: कोई
0: बात
1: बात नहीं
0: करिएगा उनसे, और
1: जी।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे सुरभि बात करके। इसके अलावा भी कोई है हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: गुड मॉर्निंग मैम,
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं अपना।
1: मैं गरिमा बोल रही हूँ गोमती नगर से। जी
0: हाँ जी गरिमा, आप हमें सुन रहे थे ना?
1: जी जी
0: तो बस ये जो हमें सुन रहे थे, ये पूछने का मतलब ये है कि हमें अपनी ही बात को रिपीट ना करना पड़े। तो अब आप अपनी बात बताएं हमें।
1: डिजिटल मतलब सभी लोग यूज कर रहे हैं आजकल तो,
0: बिल्कुल,
1: और मतलब कैश तो रखना ही समझो छोड़ दिया है, इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इस पे।
0: हाँ
1: और क्या मैसेज था, मुझे समझ नहीं आ।
0: हाँ बस हम ये जानना चाह रहे हैं आप कितना डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करती हैं।
1: हाँ मतलब ऑनलाइन कैश
0: जी जी
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: ऑनलाइन।
0: हाँ, कोई भी चीज है, आप चाहे ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, या आप अपने ऑनलाइन बिल सबमिट करते हो, कैसे भी, सारी चीजें कैसे करते हो आप?
1: आई थिंक 90% तो मेरा ऑनलाइन ही रहता है, क्योंकि
0: जी
1: बहुत ही इजी है और कैश हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती है, तो
0: जी
1: कहीं कहीं पे थोड़ा दिक्कत आती है, जहाँ पे कि
0: जैसे,
1: जैसे छोटे वेंडर्स हैं
0: हाँ हाँ
1: उनके पास कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें कैश चाहिए होता है, तो
0: जी
1: फिर वहाँ पे होता है, कई कई बार तो ऑटो वाले भी बोल देते हैं कि हमें कैश ही चाहिए, तभी बैठिए मतलब।
0: बिल्कुल। अच्छा, आपको कभी, जैसे डिजिटल चीजें, या आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, सारी चीजें आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हो, कभी डर लगा? कभी आपके पास कोई फेक कॉल आई हो? कभी कोई ओटीपी मांगने के लिए बात हुई हो?
1: ऐसा मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे जानने वालों में कई बार हुआ है, पूरा पूरा फोन ही हैक हो जाता है कई बार तो, और उनके नंबर से दूसरों के पास मैसेज जा रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें इतना कैश दे दो,
0: तो
1: तो कि
0: हाँ जी,
1: हम लोग इतना जानकार हो गए हैं कि
0: हाँ
1: हम फंसते नहीं है।
0: हाँ तो अच्छा, इन सब चीजों के लिए एक छोटा सा संदेश आप जैसी एकदम जिम्मेदार और जागरूक महिला की तरफ से, सभी जागरूक महिलाओं के लिए, जल्दी जल्दी।
1: हाँ जी बिल्कुल, यही कहूंगी कि वो लोग ना आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि तुरंत करिए, और एकदम अर्जेंसी ऐसी दिखाएंगे कि आप कुछ सोच ना पाए, तो
0: जी
1: ऐसे टाइम में जरूर सोचिए कि पक्का दाल में कुछ काला है, और
0: हाँ
1: जिसके नाम से भी वो आपको कुछ कह रहे हैं, पहला फोन उनको करिए तुरंत, कि डायरेक्ट बात हो जाएगी तो सब कुछ क्लियर अपने आप हो जाएगा।
0: बिल्कुल, धन्यवाद गरिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उन सारी महिलाओं के लिए भी कहना है जिनके अंदर थोड़ी सी भी हिचक है अभी भी, कि हम कैसे मोबाइल बैंकिंग चला पाएंगे, कैसे हम मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर

पाएंगे। भाई दोस्तों, हम नई नई डीपी लगा सकते हैं, नया नया स्टेटस लगा सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, बता सकते हैं, स्मार्ट मोबाइल चला सकते हैं, अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं, उस पे 100.7 FM रेनबो सुन सकते हैं। तो ये करना कितना मुश्किल है, जरा सोचिए खुद से।

दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब महिला पढ़ती है तो उसका जो प्रभाव है ना, पूरे परिवार पर पड़ता ही पड़ता है। वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, और अगर बेटी है वो अगले, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पढ़ाएगी, बेटा भी पढ़ाएगा। तो एक पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चों की पढ़ाई को बेहतर तरह से समझ सकती है, उनके

का ध्यान रख सकती है, उनके जो जरूरी दस्तावेज हैं उनको पढ़ सकती है, और साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी राइट्स को भी समझ सकती है। जी हाँ, उसकी जानकारी उसे होती है। इसीलिए महिला साक्षरता केवल महिला के लिए व्यक्तिगत रूप से जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की विकास की नींव है। लेकिन अब सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या साक्षर होने का मतलब केवल अपना नाम लिख लेना या कुछ शब्द पढ़ लेना है? आज इस समय में इसका जवाब है नहीं। आज साक्षरता का मतलब जानकारी को समझना, सही और गलत में फर्क करना, अपने हौसले को बुलंद करना, अपने फैसले खुद लेना और जरूरत पड़ने पर सही जगह से सही जानकारी हासिल करना है ना? खासकर महिलाओं के लिए आज डिजिटल साक्षरता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है ना, क्योंकि हर किसी को अपने लक्ष्य को पाना है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12-20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: 26 बरस का साथ है ये, यादों का सतरंगी एहसास है ये।
7: FM रेनबो लखनऊ सा दूसरा कोई कहां,
8: म्यूजिक मस्ती मैजिक सब है यहाँ।
6: 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

दोस्तों 12:33 हो चले हैं और आप सभी लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा, जिसमें शालिनी है आपके साथ लेकर आज डिजिटल साक्षरता की बात। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसी महिला की कि जिसने बचपन में स्कूल जाना तो शुरू किया था लेकिन घर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। समय बीतता गया, उसकी शादी हो गई, बच्चे हुए और परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती गई। एक दिन उसका बच्चा स्कूल से किताब लेकर आया और उसने माँ से कहा कि आप मुझे यह पढ़कर सुना दीजिए। माँ ने किताब तो हाथ में ली लेकिन वो पढ़ नहीं पाई। उस दिन उस माँ ने तय किया कि अब चाहे उम्र कितनी भी हो वो पढ़ना जरूर सीखेगी। शुरुआत में उसे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है लेकिन उसने पास के साक्षरता केंद्र में जाकर शुरू किया अपनी जिंदगी का फिर से ये नया सफर। धीरे धीरे उसने अक्षर पहचानना सीखा, फिर शब्द पढ़े और कुछ समय बाद अपना नाम लिखना सीख लिया। एक दिन उसने अपने हाथ पे अपना नाम लिखा और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। यह सिर्फ उसका नाम नहीं था बल्कि अपने आत्मविश्वास की एक नई शुरुआत थी, जो खुद में कह रही थी कि हौसले को बुलंद करो, सब अच्छा होगा। और कहते हैं ना कि दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर किसी महिला ने किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके सीखने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। जरूरत है परिवार के सहयोग की, समाज के प्रोत्साहन की और महिला के अपने विश्वास की, है ना। और अब तो और नई जानकारी जरूरी हो गई है। इंटरनेट है, मोबाइल है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चाहे वो बिजली का बिल जमा करना हो, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे बच्चों की फीस की बात हो, महिलाएं ही आगे आगे रहती हैं। और अगर महिलाएं ये सब नहीं सीखेंगी तो क्या होगा, कैश रुपए की प्रॉब्लम हो गई ना होती रहती है। तो इस तरह से अपने आत्मविश्वास को बुलंद बनाएं, क्योंकि ये तो जिंदगी है और हर एक चीज हमें सीखनी है।

आज इंटरनेट और मोबाइल फोन से जानकारी को हमारे हाथों में पहुंचा दिया है, लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी आई है, गलत जानकारी। चाहे वो सोशल मीडिया पर हेल्थ की बात हो या कोई और भी बात हो, कितनी तेजी से फैल जाती है ना, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं होता। ऐसे में डिजिटल रूप से साक्षर महिला ये समझ सकती है कि यह वायरल जो संदेश है वो सही नहीं है, और जो हेल्थ से जुड़ी जानकारी है वो भी विश्वसनीय स्रोतों से नहीं ली गई है, ना ही विशेषज्ञों से ली गई है। और अब बात करते हैं आर्थिक और डिजिटल साक्षरता की। आज महिलाएं बैंक खाते चला रही हैं, ऑनलाइन भुगतान

समझ सकती है कि यह वायरल जो संदेश है वो सही नहीं है और जो हेल्थ से जुड़ी जानकारी है वो भी विश्वसनीय स्रोतों से नहीं ली गई है, ना ही विशेषज्ञों से ली गई है। और अब बात करते हैं आर्थिक और डिजिटल साक्षरता की। आज महिलाएं बैंक खाते चला रही हैं, ऑनलाइन भुगतान कर रही हैं, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन कर रही हैं, छोटे बड़े जो भी व्यवसाय हैं वो भी चला रही हैं, लेकिन इसके लिए केवल मोबाइल का होना ही काफ़ी नहीं है। महिलाओं को ये भी पता होना चाहिए कि OTP किसी के साथ साझा नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अनजान लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना है, चाहे कितना भी बड़ा ऑफर क्यों ना हो। और ऑनलाइन ठगी से कैसे बचना है ये खुद सीखना है, और लोगों को भी साक्षर कैसे करना है ये भी आपको बताना है। जब हम कहते हैं ना हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर खुद को बदलने की ज़रूरत है। किसी के झांसे में नहीं आना है, लेकिन हाँ उसे अपने झांसे में ज़रूर ले लेना है।

दोस्तों 1:38 और 48 सेकंड का वक्त मुनेश कुमार राज लखीमपुर से हमें मेल कर रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि हमारी दोस्ती कुछ इस तरह से है। इनको इन्होंने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम लिखकर भेज दिए हैं और कहा है कि ये हमारा दोस्ती का रिश्ता है जो कि इन्हें बहुत पसंद है और ये हमारे पक्का ऐसा इन्होंने लिखा है, आपका पक्का श्रोता। भाई अगर आप पक्के हैं तो बाकी कैसे हैं। चलिए, आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमें सुनते हैं, हमसे रिश्ता बना के चलते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। सतीश अनेजा जी का भी मेल चंडीगढ़ सिटी से आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि रिश्ते प्रेम से जड़े हों तो वो भी मजबूत होते हैं, चाहे वो अपने परिवार के हों या वो जो बाहर की दुनिया में रिश्ते बनाए जाते हैं। और रेडियो के जरिए बेशुमार श्रोताओं से रिश्ते बने हैं जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा प्रगाढ़ हो गए हैं, और जब हमारे किरदार में मोहब्बत है तो रिश्ते बनते चले जाते हैं जो हमें बहुत सुकून देते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। और मोनू सेठ ने मेल किया है कि मैंने महसूस किया है कि बनावट के रिश्तों में स्वार्थ होता है, इसीलिए हम मतलब हमें या किसी को भी किसी की ज़रूरत होती है, लेकिन जो भाई का रिश्ता होता है वो खून का होता तो ज़रूर है, लेकिन जब भाई खुश होता है तो खुशी मिलती है और भाई दुखी होता है तो दर्द और तकलीफ होती है, इसीलिए इन्हें भाई का रिश्ता सबसे अच्छा लगता है और मजबूत है। और सोनू का भी मेल आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि वैसे रिश्ते तो सभी बहुत खास हैं, लेकिन किसी एक को चुनना हो तो ये अपना छोटा भाई मोनू को चुनेंगे। हमें लग रहा है ये वही मोनू जिनकी अभी हमने मोनू की बात की है, तो ये सोनू मोनू भाई भाई हैं। देखिए, एक भाई दूसरे भाई को प्यार कैसे पहुंचा रहा है और अपनी बात दिल की बात FM के जरिए सब तक पहुंचा रहा है ना। और सोनू ने लिखा है कि मेरा छोटा भाई मोनू, जब मैं अस्पताल में था, जब मेरे साथ कोई नहीं था, तब मेरा भाई अस्पताल के स्टूल पर बैठकर जागता रहता था और मैं सोता रहता था। कहते हैं कि भाई से बढ़कर मित्र कोई नहीं और भाई से बढ़कर शत्रु कोई नहीं, और मेरा छोटा भाई सबसे अच्छा। देखिए, ये जब रिश्तों में प्यार की बात होती है ना, और कुछ चीज़ें हम किसी से कह नहीं सकते हैं, और जब इस तरह के प्रोग्राम में हम बात करते हैं तो हमें मौका मिल जाता है कि चुपचाप अपनी बात हम FM तक पहुंचा दे और FM के जरिए ये हमारी बात हमारे उस खास रिश्ते तक पहुंच जाए जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये काम आज शालिनी कर रही है आपका, तो सभी लोग खुश रहिए और सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 10 तारीख व दिन है गुरुवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत होमू, मनपंगत घोषक श्री थुतन टाशी, तकनीकी अभियंता श्री तानिंग ताको और हेमंत स्वर्गियारी। ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी छोटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: water receipts. The education department is also making arrangements to continue the studies of children in flood-affected areas. Meanwhile, the situation remains concerned in Baltara, in Khagadia and Kursela in Katihar, where the Kosi is flowing about 1.5 meters above the danger mark. Teams of the Water Resources Department and District Administration are keeping a close watch on the situation. Nidhishree for Akashwani News, Patna.
1: In cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final match of Women's Asia Cup today in Dubai. The match will begin at 8 p.m. IST. India will look to maintain their dominant run in the tournament. Harmanpreet Kaur's team won all three group matches, beating Thailand, Hong Kong and Pakistan convincingly. Bangladesh finished second in Group B behind Sri Lanka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Agha Khan V in New Delhi, discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठक

0: विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्मभूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए

0: melancholy, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन।

0: मिलगा वेत्री खशगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारविल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में

0: खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिदार, सुप्रिया और रोशनी एंद ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे देवाशीष दास गुप्ता की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे देवाशीष दास गुप्ता की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसके साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है CKYC ID।
1: CKYC मतलब?
2: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, RBI कहता है
2: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कुमार सानू की आवाज में चंद बांग्ला आधुनिक गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में चंद बांग्ला आधुनिक गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है मासिक कार्यक्रम महिला मंच। इसमें आज आप सुन सकेंगे वन स्टॉप सेंटर तवांग की एडवोकेट सोनम जामू से घरेलू हिंसा विषय पर बैंड वार्ता। उनसे बैंड करता है दर्जी ड्रामा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारे साप्ताहिक महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सोनम साहू जी। तो सोनम जी, आपका सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ।
2: आपको भी नमस्कार
1: जी। तो श्रोताओं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ आज के विशेष मेहमान है एडवोकेट सोनम साहू, तो जाहिर सी बात है कि आज हम अधिनियमों पर ही चर्चा करेंगे और कार्यक्रम का नाम ही कार्यक्रम महिला मंच है, तो इसमें हम महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए कई सारे अधिनियमों पर बात करेंगे। तो सोनम जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 या घरेलू हिंसा, आप हमें बताइए कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और घरेलू हिंसा कितने तरह के होते हैं।
2: जी शुक्रिया। घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस हम उसे कहते हैं जो घर के चार दीवारों के अंदर होता है ना। एक छत के नीचे में जितने भी आदमी रहते हैं, जैसे कि एक महिला एक दूसरे घर में शादी करके जाते हैं तो उसका पति का परिवार हो गया, या फिर वो अपने घर में जो अपने माँ बाप भाई बहन या फिर ज्वाइंट फैमिली है तो अंकल आंटी जिसके साथ भी रहते हैं, तो मतलब एक घर के अंदर में जो हिंसा होता है उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं या घरेलू हिंसा कहते हैं। और घरेलू हिंसा के हमारे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में 5 types दिया गया है, 5 types। तो पहला है फिजिकल एब्यूज, दूसरा है इमोशनल एब्यूज, तीसरा है सोशल एब्यूज, चौथा है सेक्सुअल एब्यूज और लास्ट इकोनॉमिक एब्यूज। तो मैं इसको थोड़ा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी। फिजिकल एब्यूज हम किसे कहते हैं, जैसे नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि मतलब फिजिकल मतलब आपको मारना पीटना, उसको हम फिजिकल एब्यूज कहते हैं और वो दिखाई भी देता है अगर किसी के साथ फिजिकल एब्यूज हुआ है तो। मगर जब हम इमोशनल एब्यूज की बात करते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर विक्टिम को खाई जाता है ना, तो वो दूसरे टाइप होता है। फिर आता है आपका सोशल एब्यूज। सोशल एब्यूज मतलब मेनलैंड इंडिया में कई कई जगह पर जो बहुत ही अंदर रिमोट एरिया है वहां पर अभी तक भी ऐसे औरतें हैं जिसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, तो वो सोशल एब्यूज के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका सेक्सुअल एब्यूज ना। तो हमारे इंडिया में मैरिटल रेप को अभी तक क्राइम नहीं माना जाता है, तो अगर कोई हस्बैंड कोई किसी वाइफ को मैरिटल रेप करता है तो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में उसको सेक्सुअल एब्यूज के अंदर में बुक कर सकते हैं। लास्ट आता है आपका इकोनॉमिक एब्यूज। इकोनॉमिक एब्यूज मतलब जिसे मैंने आपको कहा मेनलैंड इंडिया में कई सारी जगह है जहाँ पर अभी तक औरतों को अपना बैंक अकाउंट भी खोलने नहीं दिया गया है, तो इस तरह का मतलब सिचुएशंस है और उनको खर्चा पानी नहीं दिया जाता है, तो ये सब इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर में आता है।
1: तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं आते हैं बल्कि और भी बहुत सारे हिंसाएं आते हैं, जैसे यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा या आर्थिक हिंसा या कई तरह के और भी हिंसाएं हो सकते हैं। तो अगर किसी के साथ अगर ऐसी घटना या ऐसी हिंसा होते हैं, कहाँ जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए?
2: जी, हमारे अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी के साथ भी

0: इस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो अपने अपने जो पास के पुलिस स्टेशन है वहां जाके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर तवंग है, वहां जाके वो डायरेक्टली आके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। और जब वो कंप्लेन करते हैं तो हम जब वो वन स्टॉप सेंटर में आते हैं तो फर्स्ट हम उनका डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंगली, उसके बाद में हम उनको जेएमएफसी कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां जाके डीएलएसए की मदद से उनको आगे की कार्रवाई किया जाता है।
1: क्योंकि हमारे समाज में लगभग शारीरिक रूप से जो हिंसा हुआ है उसी को ही सच माना जाता है, लेकिन अब सरकार ने हमें सुविधाएं दे रखी हैं कि किसी भी तरह के हिंसा आपके साथ अगर होते हैं तो आप आकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी ही घटना घटती है, अगर वो आकर आपके पास शिकायत दर्ज भी करते हैं तो सरकार की ओर से और उस पीड़ित महिला को क्या क्या रिलीफ मिलते हैं?
0: जी, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम अपने DIR को फॉरवर्ड करते हैं जेएमएफसी कोर्ट में, तो वहाँ पर जो भी जो लीगल एड क्लिनिक में एडवोकेट है वो उनको मदद करते हैं। तो उसके बाद में अकॉर्डिंगली, मतलब उनका जो कितना सीवियर उनके साथ में वायलेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग में उनको रिलीफ दिया जाता है। तो फर्स्ट आपको रिलीफ में आता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिसमें जो औरतें होते हैं, विक्टिम होते हैं, उनके जो एक्यूज होते हैं या रेस्पोंडेंट होते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है। तो वहां पर उनको वो फिजिकल वायलेंस या किसी भी तरह का जो फिजिकल वायलेंस या इकोनॉमिक वायलेंस जो भी, उसको रोक दिया जाता है। फिर सेकेंड आता है आपका रेसिडेंस ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर में क्या होता है, आपका एक महिला को जब वो घर से निकाल दिया जाता है उसका हस्बैंड या किसी भी
1: कोई भी सदस्य
0: घर के सदस्य के द्वारा, तो वो रेसिडेंस ऑर्डर की मांग कर सकता है। फिर आता है आपको मॉनिटरी रिलीफ। वहां पर अगर उनके साथ में मतलब मंथली मेंटेनेंस नहीं देता है या फिर इकोनॉमिक वायलेंस हो रहा है तो मेंटेनेंस के लिए वो प्रे कर सकती है। फिर कस्टडी ऑर्डर तो मेनली बच्चों के लिए होता है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ या कोई भी सदस्य किसी भी महिला के बच्चों को लेने के लिए करता है तो वो कस्टडी ऑर्डर के लिए मांग कर सकता है। और लास्ट है आपका कंपनसेशन ऑर्डर। तो इस एक्ट के अंदर में पीड़ित महिलाओं को कंपनसेशन भी दिया जाता है, जो कि होता है फिजिकल वायलेंस या इमोशनल वायलेंस के लिए दिया जाता है।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, या हम जिसे पोश एक्ट 2013 भी कहते हैं, तो इसके बारे में मैं और हमारे श्रोताएं जानना चाहेंगे कि पोश एक्ट किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या जो ऑफिसेस में काम करते हैं वही महिलाएं आते हैं, या फिर घर में जो काम करते हैं, या घर में काम ही नहीं बल्कि किसी के घर में रहते भी है कोई, जब कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में आते हैं तो उनके घर गांव में होते हैं, तो किसी रिश्तेदार के घर पर अगर वो रहती है तो उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा जो हैरेसमेंट होते हैं तो क्या उन पर भी ये लागू होते हैं?
0: जी, शुक्रिया। फर्स्ट में पोश एक्ट का फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगी, POSH, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पर भले ही वर्क प्लेस सिर्फ लिखा है, ये एक्ट जो है, जैसे आपने मुझे पूछा डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है कि नहीं, बिल्कुल ये एक्ट जो है डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, उनके लिए ये लागू होता है।
1: जैसे कि किसी के साथ ऐसी हिंसा या कोई हैरेसमेंट होते हैं तो अगर वो किसी को शिकायत दर्ज करना चाहे भी तो थोड़ी सी खुलकर नहीं बोल सकते हैं, तो अगर शिकायत दर्ज करना चाहे तो किस तरह से करेंगे?
0: तो इस एक्ट के अंदर में ये भी कहा गया है कि किसी भी ऑफिसेस ना, किसी ऑफिसेस या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर मैंडेटरी है कि एक इंटरनल कंप्लेन कमिटी बनाना है। तो उस कमिटी में आपका चार मेंबर होना है और उस चार में से मैक्सिमम नंबर जो है, मतलब 50% से ज्यादा मेंबर जो होना है वुमेन होना है, जो वुमेन रिलेटेड वर्क करता है, जो एनजीओस में है उनको वहां पर अपॉइंट करना है। और जो जो इंटरनल कमिटी में है, इंटरनल कंप्लेन कमिटी में है, उनका नाम अपने अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में उनको डिस्प्ले करना है, ताकि जो एम्प्लॉयज है उनको ये नॉलेज हो कि अगर उनके साथ में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो वो किसके पास जाके कंप्लेन करना है। क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिसेस में होता है तो उनका जो कंप्लेन है फर्स्ट आपको IC मतलब इंटरनल कमिटी में जाके लॉन्च करना पड़ता है। फर्स्ट ये इंटरनल कम्प्लेन कमेटी हुआ करता था, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इन 2016 इसको सिर्फ इंटरनल कमेटी के नाम से जाना जाता है.
1: अच्छा.
0: क्योंकि ये कमेटी जो है सिर्फ कम्प्लेन तक ही सीमित नहीं है, इनका पावर इससे ज्यादा है. इसलिए

0: भी इनको हम इंटरनल कमेटी के नाम से जानते हैं। और अगर 10 से कम वाले जो ऑफिसेस है वो अगर कंप्लेन करना चाहते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज में आपका लोकल कमेटी होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको अप्रोच करके वो अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।
1: जी जी सुनम जी, क्योंकि मैं हर बार ये कहती हूँ कि हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं, हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें बहुत ही कम ना के बराबर होते हैं, फिर भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना हमारे कर्तव्य है। और हर ऑफिस में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहाँ पर एक इंटरनल कमिटी होना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि किसी भी महिला के साथ अगर ऐसी हिंसा होते हैं, हैरेसमेंट होते हैं, तो वो सीधे जाकर अपनी शिकायत कर सके। और मैंने ये भी सुना कि शी बॉक्स पोर्टल नामक एक वेबसाइट है, तो इस बारे में आप हमें बताएं।
0: आजकल ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन करने से, बाहर आने से उनको शाय फील होता है, घबराहट फील होता है, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है ना, एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वहाँ में जो पीड़ित महिलाएं हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रहे अपने ऑफिसेस में, वो डायरेक्टली ऑनलाइन भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। shebox.wcd.gov.in, यहाँ पर जाके वो डायरेक्टली अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर से जो भी उनका कंसर्न ICC है या LC है, लोकल कमेटी है या इंटरनल कमेटी है, वो अपने कंप्लेन को टिकअप कर लेंगे।
1: जी जी, मतलब अगर किसी के साथ ऐसी हैरेसमेंट होते हैं तो वो बिना किसी दूसरों को बताए ही अपने लैपटॉप से या अपने ही कंप्यूटर से वो इस पोर्टल को टाइप करते हुए अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं ना। और सुनम जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसे कहते हैं और यह अधिनियम कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए लागू होते हैं?
0: जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो है बच्चों के लिए, ये एक एक्ट है जो 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। आपने निर्भया केस तो जरूर सुना होगा, जो घटना हुआ था निर्भया केस, तो उसमें आपको जानकारी होगा कि वहाँ पे एक एक्यूज जो है वो जुवेनाइल था, जिसके होते उस सीवियर पनिशमेंट इतना नहीं मिला था, जिसके वजह से भी इस एक्ट को थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ा। तो उस केस के बाद से अब जो बच्चे हैं, जो 16-18 इयर्स के बच्चे हैं, अगर वो हीनेस क्राइम करता है, हीनेस क्राइम मतलब जो 7 इयर्स से ज्यादा पनिशमेंट होता है जिसमें, अगर वो ऐसा क्राइम करता है तो उनको भी एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जैसे आपने हमको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पूछा है, तो नॉर्मली ये बच्चों के लिए ही है, बच्चों के लिए है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में दो तरह का बच्चा आता है, एक है आपका CNCP और दूसरा है CCL। CNCP मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एंड CCL मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ।
1: तो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ या फिर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन दोनों में फर्क क्या है? और अगर किसी बच्चे से अपराध हो जाते हैं तो उन पर कार्रवाई कौन करेंगे?
0: CNCP जैसे कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, और CCL मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जो 18 से नीचे बच्चे हैं वो अगर कोई क्राइम करता है तो उनको कहाँ पर, हम नॉर्मल कोर्ट में तो उनको हम लेके नहीं जाएंगे, तो उनको हम लोग डील करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो इस एक्ट के अंदर में ही दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली होता है, नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होता है। तो उसमें 3 मेंबर होता है, एक होता है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जो हमेशा अब वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा JMFC मैम होता है यहाँ का, या सर होता है, वही प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है। फिर जो 2 बाकी मेंबर है वो किसी भी NGO का मेंबर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, या फिर सोशल वर्कर हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर में देखा जाता है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो बच्चे होते हैं उनको जो है केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होते हैं, जो डेस्टिट्यूट होते हैं, जिसका माँ बाप ने उसको अबेंडन कर दिया होते हुए भी, ऐसे तरह के बच्चे ना, तो उनको इसी एक्ट के अंदर में CWC ना, जैसे GGB दिया है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करके होता है, जहाँ पर एक चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर होते हैं, वो लोग उनको देखभाल करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका माँ बाप होते हुए भी उसको नहीं देख रहा है, नहीं देख पा रहा है, या फिर कोई बच्चा का कुछ आता पता नहीं है ना, और जो कोई बहुत ही पुअर फैमिली से या फिर ऐसे बिलोंग करता है, तो उनको CWC टेक केयर करते हैं।
1: जी, और जब हम बच्चों से संबंधित चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं साथ में ये भी जानूंगी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए आप।
0: जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें क्या होता है, आपका जो 6-14 इयर्स का बच्चा होता है उसको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देने का बात करता है ये एक्ट। किसी भी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको हम एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, और किसी भी स्कूल, गवर्नमेंट रन स्कूल है,

0: वहाँ पर बच्चों को हम फीस नहीं ले सकते, किसी भी तरह का चार्ज नहीं ले सकता है, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना है, और जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उनके लिए भी ये होता है इस एक्ट के अंदर में कि उनका जो 25% होता है, 25% जो होता है वो
1: तक छूट मिलेंगे
0: जी, मतलब बैकवर्ड क्लासेस जो बच्चे हैं उनके लिए मतलब रिजर्व होना चाहिए। तो मेनली ये एक्ट यही कहता है कि जो 6 to 14 ईयर से उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ही है, भले ही अगर वो अपने एज से ज्यादा, किसी किसी का ऐसा होता है कि वो एज चला जाता है फिर वो उस क्लास में फिट नहीं होता है, तो वो कंसर्न स्कूल का ड्यूटी होता है कि उसको वो स्कूल में भर्ती कराना है, चाइल्ड स्पेशल नीड की तरह उनको ट्रीट करके उनको पढ़ाना है, उनके दूसरे जो बच्चे होते हैं उसके साथ में बराबर उनको लाना उनका ड्यूटी होता है।
1: जैसे कि अभी बाल मजदूर हमारे यहाँ पर तो बहुत ही कम होते हैं, आजकल हर कोई समझदार हो चुके हैं कि सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर से लाकर भी किसी के होटलों में या घरों में काम कराते हैं, हालांकि उनके माँ पिताजी के रजामंदी के साथ

0: पढ़ाना है, उनके दूसरे जो बच्चे होते हैं उसके साथ में बराबर उनको लाना उनका ड्यूटी होता है।
1: जैसे कि अभी बाल मजदूर हमारे यहाँ पर तो बहुत ही कम होते हैं, आजकल हर कोई समझदार हो चुके हैं कि सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर से लाकर भी किसी के होटलों में या घरों में काम कराते हैं, हालांकि उनके माँ पिताजी के रजामंदी के साथ ही कराते हैं, फिर भी ऐसे बच्चे अगर 6 से 14 साल के बीच के निकले तो उन पर क्या ये कानून लागू है या नहीं?
0: जी, ये जो है 6 to 14 years जो है वो सभी बच्चों के लिए है, इंडिया के सभी बच्चों के लिए उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। और अगर कोई व्यक्ति 6 या 14 वर्ष के बच्चों को काम पर रखता है तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर उसको बुक किया जाएगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर कोई काम लगाता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर में आता है। और चाइल्ड लेबर भी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तो हम बच्चों को अपने घर में भी काम नहीं लगा सकते हैं। किसी के बच्चे को अगर हम पढ़ाने लेके आते हैं तो उसको हम काम नहीं लगा सकते हैं, उनको पढ़ाना ही है 14 साल तक तो। हाँ, फिर अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, किसी भी अगर वो लोग दुकान चला रहा है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, वो उसका मम्मी पापा बिजनेसमैन है तो वहाँ पर वो थोड़ा उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वो भी स्कूल आवर्स में करना मना है। उनके वेकेशन में हो गया, फिर अपने स्कूल छुट्टी होने के बाद आधा घंटा एक घंटा के लिए वो थोड़ा मदद कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लाइट काम, हैवी काम उनको नहीं दे सकते हैं। और जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं जो मतलब 19 years ना, जो 14 to 19 होते हैं, उनको हम हल्का हल्का अपने जो घर का दुकान हो गया जिसे मैंने आपको बताया ना, उन सब चीजों में वो मदद कर सकते हैं। बाकी 14 से नीचे 6 वर्ष तक हम किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का काम में जो चाइल्ड लेबर जैसे दिखता है, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट में मतलब किस किस एरिया में हम काम नहीं करा सकते वो लिस्ट भी दिया गया है। जैसे आपका फैक्ट्री वर्क हो गया ना, तो फैक्ट्रीज वगैरह में बच्चों को हम काम में नहीं लगा सकते हैं।
1: जैसे कि हमने कार्यक्रम में पहले चर्चा किए थे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड ही कहते हैं, तो मैंने अक्सर ऐसे लोगों को कई बार देखा है कि घर के बड़े या फिर कोई रिश्तेदार किसी भी छोटे बच्चे को शराब की दुकान में शराब खरीदने के लिए भेज देते हैं, या फिर किसी भी दुकान में तंबाकू से बने चीजों को खरीदने के लिए भेज देते हैं। तो उस समय क्या है ना, वो बच्चे के जो बहुत ही नाजुक समय होते हैं जीवन के, तो ये कहाँ तक सही है इस तरह के काम बच्चों को लगाना, और आप उनको क्या कहना चाहेंगे आप एक एडवोकेट होने के नाते?
0: जी, ये फिर आपका अलग कानून है जिसको हम कोटपा एक्ट कहते हैं।
1: अच्छा।
0: देखिए, जब एक बच्चे को तंबाकू या फिर शराब कोई खरीदने बेचता है तो वो ऑब्वियसली बच्चा खुद का तो नहीं होगा, उनके घर का कोई बड़ा ही उनको खरीदने बेचता है, तो इससे क्या होता है, ये तो मतलब कानूनी अपराध है। उसके ऊपर में अगर हम बच्चों को अगर ऐसे कुछ चीज खरीदने बेचते हैं तो उनको अगर इस चीज का ज्ञान नहीं होने से भी ज्ञान आ जाता है, मतलब इसे सिगरेट कहते हैं या फिर इसे दारू कहते हैं, वो ये जानने का मन हो जाता है, फिर वो ट्राई करते हैं, ऐसे करके बच्चों को भी मतलब बहुत खराब असर पड़ता है,
1: वो भी गलत रास्ते पे चलने लग
0: गलत जाते रास्ते में चले जाते हैं। तो इसलिए जो घर के बड़े हैं वो खुद के लिए नहीं सोच के बच्चों के लिए सोच के एटलीस्ट बच्चों को ये सब चीज खरीदने नहीं बेचना चाहिए, वो कानूनी अपराध भी है ये। और जो बेचता है दुकानदार, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई छोटा बच्चा कोई तंबाकू या फिर कोई शराब खरीदते आता है तो उनको वो नहीं बेचना चाहिए।
1: जी जी जी, तो हमारे आज के इस कार्यक्रम के समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं, तो आज आपने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपनी कीमती समय निकाल कर आए और हमें कई सारे महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए अधिनियमों के बारे में जानकारी दी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वन स्टॉप सेंटर तवंग की एडवोकेट सोनम जांगमू से घरेलू हिंसा विषय पर भेंट वार्ता, उनसे भेंट करता थी दर्जी ड्रामा। इसी के साथ आज का हमारा मासिक कार्यक्रम महिला मंच यही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर की 3:50 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
4: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में फिल्म रॉय से। शब्द रचना है कुमार की, वह संगीत है अमाल मलिक का।

अभी आपने सुना कपूर एंड सन से गीत, अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज में गीतकार थे डॉक्टर देवेंद्र काफिर, व संगीत था तनिष्क बागची का। श्रोताओं आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे इरशाद कामिल द्वारा शब्द फिल्म तमाशा से। मोहित चौहान की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

अभी आपने सुना फिल्म सनम रे से गीत अरमान मलिक, पलक मुच्छल और अमाल मलिक की आवाज में गीत करते हैं मनोज यादव व संगीत था अमाल मलिक का। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म हॉलीडे से। शब्द रचना है इरशाद कामिल के व संगीत है प्रीतम का।

0: अभी आपने सुना फिल्म क्वीन से गीत अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह की आवाज में, गीतकार थे अन्विता दत्त व संगीत था अमित त्रिवेदी का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे आतिफ असलम की आवाज में, फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। शब्द रचना है इरशाद कामिल की, वह संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म बूद वन से अखिल सचदेवा और मर्शिल गुजराल की आवाज में। शब्द रचना है अखिल सचदेवा के, वह संगीत है स्वयं अखिल सचदेवा का।

फिल्म बूथ वन के संगीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से ख्याल। राग है जय जय अवंती। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुने शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर सुनप्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग ने भारतीय वायुसेना के समन्वय से शिलांग जिले के मिचुका से गंभीर रूप से घायल दो मरीजों को सफलतापूर्वक हवाई मार्ग से डिब्रूगढ़ के मोहनबारी पहुंचाया। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर शिलांग जिले के पैना तथा सड़क परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। दिबांग वैली जिला निर्वाचन रोल ऑब्जर्वर ने आने में मतदाता सूची के

0: इलेक्शन एसआईआर 2026 की चल रही प्रक्रिया की समीक्षा की। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी टीम के तहत ICDS परियोजना नामसांग के तहत 9वें राष्ट्र पोषण माह का शुभारंभ, CRPF की 138वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम CRP 2026-27 के तहत ईटानगर स्थित चिंपू में बुनियादी सिलाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही किना याकप ने लद्दाख में 7,077 मीटर ऊंची माउंट कून चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की और दुबई महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्लामी मुस्लिम समुदाय के 5वें ईमान और समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान के विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी की और मजबूत करने को तरीकों पर भी चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन से के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफॉर्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग ने भारतीय वायुसेना के समन्वय से शिलांग जिले के नचुका से गंभीर रूप से घायल 2 मरीजों को सफलतापूर्वक हवाई मार्ग से डिब्रूगढ़ असम के मोहनबारी पहुंचाया गया है। दोनों मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए नचुका के सर्कल ऑफिसर रितु तावे द्वारा रखी गई मांग के आधार पर यह आपातकालीन निकासी अभियान शुरू किया गया। नागरिक उड्डयन विभाग ने इस अभियान में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मियों और संबंधित एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। विभाग ने मरीजों को सुरक्षित और समय पर निकालने में त्वरित प्रतिक्रिया और महत्वपूर्ण सहयोग के लिए भारतीय वायुसेना के प्रति विशेषकर आभार व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर शिलांग जिले के पेनातातो सड़क परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यह सड़क क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग और इसका समय पर पूरा होना प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाए रखने, कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय सीमा का पालन करने का आग्रह किया, ताकि बेहतर संपर्क सुविधा का लाभ लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दिबंगवली जिला निर्वाचन रोल ऑब्जर्वर VIIVJ राजशेखर ने अरिनी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2026 की चल रही प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता पर जोर देते हुए BLO एवं BLA से दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया, ताकि सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची सुनिश्चित की जा सके। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम के तहत ICDS परियोजना नामसांग के तहत 9वें राष्ट्र पोषण माह का शुभारंभ सोहा में किया गया। ये कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ARSRLM, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज संस्थाओं और शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर यह संदेश दिया गया कि बच्चों और माताओं के विकास, वृद्धि और समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उचित पोषण, आहार में विविधता और स्वस्थ खान पान की आदतें बेहद आवश्यक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 138वीं बटालियन ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम CAP 2026-27 के तहत ईटानगर स्थित चिंपू के बुनियादी सिलाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। 8 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य बटालियन के कार्यक्षेत्र में रहने वाले स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों में कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के तहत

0: लाभार्थियों के बीच पेडेस्टल स्टैंड और स्टूल सहित चार सिलाई मशीनें भी वितरित की गई। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही किनो याकप ने लद्दाख में 7077 मीटर ऊंची माउंट कून चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। माउंट कून जांस्कर पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियों में से एक है और ये अपनी तकनीकी चुनौतियों तथा कठिन मौसम परिस्थितियों के लिए जानी जाती है। इस उपलब्धि पर किनो याकप को बधाई देते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और साहस लगातार लोगों को प्रेरित करता रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम गेब्रेसिस ने स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेत्से में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: नेपाल में अचानक आए बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,377 हुई है। 5,000 से अधिक लोग अभी भी लापता है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 346 लोगों की जान चली गई। प्रभावित क्षेत्रों में 13,600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन राहत सामग्री भेजी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्य अवधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद व्यापारी आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमेरिकी डॉलर और 30 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलन में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में चल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक AI एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन CS शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और UIDAI के पूर्व चेयरमैन नंद नीलेखणी एजेंटिक AI टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashwani, the news read by Hage Ani. Prime Minister Narendra Modi today met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said he fondly recalled the late Aga Khan IV and his enduring contributions to development efforts. The Prime Minister said they discussed ways to further strengthen India's partnership with the Aga Khan Development Network in healthcare, agriculture, rural development, youth and women empowerment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also met eminent philanthropist and 50th Imam of the Ismaili community Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed the impactful work in social development and heritage preservation by the Aga Khan Development Network and further opportunities in India and abroad. Director General

0: दिल्ली पुलिस कमिश्नर कुशब अनुराग कुमार से उच्च बिग्स सोनिक तो कहा संख्या थपसिचित नमदा चेयुक चे शुंक ठुम निंग शेसुंग या उच्च काजो लगलिन नमो इंबुयस नमनी जगर नमशिले कुंसी नदे उड़ीसा का देश नम दर्शामुनो थेम सोमक न्यंकनुक रेड कलर वार्निंग का फेप नवंबर लेखुंग सी ताओ नेसल बिदंगा नदे असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड उत नदे बाखा शुभप्लांग सुमसाक नामथेम सोमक निंगनी नेक्स नवंबर मू बुजाक एशिया कप क्रिकेट चमु तेंदुलका सेमीफाइनल रिम्बा तेंदुलका देश ग्यारह निंग बांग्लादेश निक ब्रेखा सेंजू किम्बुर उस तेंदुल चो दुबई का ग्यारक सुजय घटवा याना नब सुजय केदुकोर शन नायु किम्बुर संगनम उद्यक का देशिक नेसल खा चेंशो शुशु बनो दोस संगनों दा उजु शुचे क्यब जे खेवां संदों रुम बिशेसी तवं गुनपा छे युर प्योकन केंदन निं निमं संगन आशल थुन्रुक लमें नेजुर सुचे सु तं शेदन लरिमा सन्मेजिक मार मुथिया सन्नांसा
1: ཉི་བཅའ་ཡིན་སོང་དེ་མང་གོ་སོང་དུ་བ་ཇུག་གི་ན་ལ་ཅིག་མང་པོ་ཡོད་རེ་དེ་ལ་ཡིན་དུ་ཁན་ལ་བོ་མེ་བོ་མེ་བོ་སོ་ཅན་སིང་གི་ལ་བལ་ལེན་དེ་སོང་ཡིན་ན་ང་གི་དུམ་བ་ཡུག་གེན་ཅིན་བ་ཡིན་ན་སོ་ཅན་སིང་རང་རང་གི་དུམ་བ་ལེན་གེ་བེ་ཉི་བཅའ་གུ་མེ་དུ་སོ་ཅན་སིང་གེ་བེ་དེ་ང་གི་བོང་བུ་ཅིག་ཅེ་དུ་གན་དུ་ཇོ་བ་ཅུང་ཤུ་ཅ་སོང་གུ 지금이 롱어 마제바 사빈 준비 동아라지 중앙이나 중유디 진실로서 최대한기 저와치라든지 중앙에디 이나야 주제 맡은 밤 롱어 마제바 지 중앙이나 섭서 마제바 밤에 밤 중앙 소리치르바 나한테서 나영아 공부지 연구를 그러면서 전하는데 남한만 출급된 게 부분하지 남한만 주 급다 개외 봉부리 디세간도 순 송이 인스체네 한테 봉부초 봉부초 셰바티 니소마다 징벌된 주바다 그메스년 흐른 대변이부티 제다 루루근데 봉부 남셰나라 봉부 제만도 메버레티 데소도소 조심하네 시약감부 인송여리 약간 봉부초지 담 마주이기 두문만이 배탐세 백골로 디저로 소바 마주이기 나이 두문만이 배탐세 제진진 아무나 지어리 윤백군주 마주기 낸주로 받아서 나바 예배 참리야 윤거 배주 다야다 고라 예고 제약 참리야 윤거 제약 근데 마주기 나대서 진거 제배 겁다 신양지 난주다 주어라서 진진 나배 겁니야 윤거 제네 진진은 예고 마주기 윤거 진주거는 들리야 윤백군주 배면에 민예바 다도 주어 제바 비면에 님에서한테 나게 소동하는 지여러와 인디디 비면에 미녀바 생인다 메덴베 레지 찾아라 뉴주 미제바 레지 찾아다 뉴버 주베 쓰나 따와다 메제와 도만지 등 이래 제바다 메제와 자남 자반남 제지 나게 담벌리야 그바다 메번 주어 메바 전전다 미든기 찾아나 뭐니 미든지 찾아 주유니다 단둥기 체제 노지치부 디닌도 맨데로 치 손이 소바다 남근을 내는 노베 탑리아 토르메바 군다다베 전주심 치료주 민중벌 선벌주바 땜벌 내다 발체를 소여 원기 군다다베 전주심 치료주 보아이는 라이한디 동구요레 헌텐베 전생 냄비수는 쭈쭈에 조합방바 헌두신디 마주통마인베 담생 모란 두신벌이 근데 맨인 성주에 대한 전선에서 주주 보안스

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है।

0: गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरोखा में पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदन लिरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे लामा मेतो टैशी, लामा रिंचन सवांग, अनिलोपसंग सेयंग और अनिलोपसंग सेतुन से बौद्ध भक्ति गीत। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे एलडी स्कॉलर्स होम स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा दुंडुप वांगुदोंगे से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा आइसक्रीम मैन। शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत शान और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म 3 इडियट्स से शान और शांतनु मोइत्रा की आवाज में गीत। फिल्म कोई मिल गया से कविता कृष्णमूर्ति, शान और बेबी स्नेहा की आवाज में गीत। फिल्म पीके से शान और श्रेय घोषाल की आवाज में गीत। फिल्म हम तुम से शान और अलका याग्निक की आवाज में गीत। फिल्म गोलमाल 3 से शान और अनुष्का मंजंदा की आवाज में गीत। फिल्म हे बेबी से शान, सोनू निगम और शंकर महादेवन की आवाज में गीत और फिल्म जब वी मेट से शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत फिल्म गुंजन सक्सेना से अरिजीत सिंह की आवाज में। आज रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल यानी 11 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुन सकेंगे गांधी स्मृति और हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3:00 विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत, आप सुन सकेंगे अरुण जमातिया, जासुआ हालिम, प्रियंका और साथियों की आवाज में चंद कोकब्रुक आधुनिक गीत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग।

जिसमें आप सुन सकेंगे कलाकार रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन। 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नमथार कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री लोपसांग नरबू से 5:35 पर कार्यक्रम कुंसिल और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदम लेरिम जिसमें आप सुन सकेंगे लामा मेतो टशी लामा रिंचन सोंग अनिल लोपसांग सियांग और अनिल लोपसांग छेतुन से बौद्ध भक्ति गीत का शेष भाग। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे जिसमें आप सुन सकेंगे इलाइट इंग्लिश स्कूल तवांग की तीसरी कक्षा के छात्र रिंचिन दोरजी से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा वाई गॉड मेड टीचर्स। 7:11 पर कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत विनोद राठौर की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म बाजीगर से विनोद राठौर की आवाज में गीत, फिल्म दीवाना से विनोद राठौर और साथियों की आवाज में गीत, फिल्म दूल्हे राजा से विनोद राठौर की आवाज में गीत, फिल्म इम्तिहान और फिल्म तरीबार से विनोद राठौर की आवाज में गीत। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम क्वामी तराने के अंतर्गत टाइगर शरफ की आवाज में। कल रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि की ठीक 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरूखा यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाने रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता

0: पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
1: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान विकास नेटवर्क के समाज सेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान विकास नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the International Space Summit at Paris in France today.
3: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said India aims to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. Prime Minister Modi said the country's guiding principle is clear, their benefits must reach all humanity. Lauding the role of ISRO in space journey, Mr. Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. New Delhi is gearing up to host the 18th BRICS summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit, beginning at Bharat Mandapam on Saturday, brings together the world's major emerging economies. India is the current chair of the influential grouping. Top leaders of the grouping include Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin will be attending the BRICS summit. Chinese Foreign Ministry today said President Xi will be arriving in India this week to take part in the summit at the invitation of Prime Minister Narendra Modi.

0: आज बहुत काम
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening to
0: you। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: I'm not listening to you।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: Okay, I'm not with her।
0: तो इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: Okay, that's it।

अभी आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से गीत शान, कविता कृष्णमूर्ति और बेबी स्नेहा की आवाज में गीतकार थे नासिर फराज व संगीता राजेश रोशन का। आप सुनिए कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत शान और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म पीके से शान और श्रेय घोषाल की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शांतनु मैत्रा ने।

श्रोताओं, आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने फार्म को सवाई के अवसर पर प्रदेशवासियों विशेषकर खोआ समुदाय के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये पर्व सभी के लिए भरपूर फसल, समृद्धि और सुख शांति का नया मौसम लेकर आए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा है कि कृषि आधारित त्यौहार जनजातीय समाजों की जीवन धारा है, जो प्रकृति और उस भूमि के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाते हैं जो उनकी जीवन और आजीविका का आधार है। उन्होंने कहा है कि फार्म खो सवाई केवल फसल उत्सव नहीं बल्कि खोवा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति भी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए गोल्डन जुबली मेधावी छात्र पुरस्कार के तहत राज्य स्तर के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। ईटानगर में आयोजित पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने युवा प्रतिभाओं से अनुशासित, एकाग्र और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि उन्हें भविष्य में अरुणाचल प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना होगा। समारोह में कक्षा 3 से 12वीं तक के कुल 30 राज्य स्तरीय टॉपर्स को सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न जिला स्तरों पर करीब 840 विद्यार्थियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने तवांग में आयोजित होने वाले 14वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आईटीएम 2026 की तैयारियों को लेकर तैयारी सह समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आयोजन के सुचारू और सफल संचालन के लिए सुरक्षा, परिवहन, आवास, लॉजिस्टिक प्रोटोकॉल तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से जुड़े प्रमुख प्रबंधों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोना ने कहा है कि तवांग में

आईटीएम 2026 की मेजबानी अरुणाचल प्रदेश की पर्यटन क्षमता, संस्कृति और आतिथ्य सत्कार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस आयोजन का संयुक्त रूप से आयोजन केंद्र पर्यटन मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा की जा रही है। ईटानगर स्थित स्टेट बैंक्वेट हॉल में आज यू मेंटर ऐप, एनीमिया मुक्त भारत अभियान के और आरबीएसके 2.0 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के तहत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूआईपी के अंतर्गत निगरानी और मेंटरिंग के लिए यू मेंटर एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी आयोजित की जा रही है। मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य सचिव विवेक एचपी ने कहा है कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के प्रति जागरूक करना है, ताकि टीकाकरण की निगरानी और मेंटरिंग व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा है कि यू मेंटर ऐप टीकाकरण गतिविधियों की निगरानी और लाभार्थियों की जानकारी पर नजर रखने के लिए डिजिटल उपकरण और स्वयं सीखने की सुविधा उपलब्ध करता है। इससे अधिकारियों को उन बच्चों की पहचान करने में मदद

0: गतिविधियों की निगरानी और लाभार्थियों की जानकारी पर नजर रखने के लिए डिजिटल उपकरण और स्वयं सीखने की सुविधा उपलब्ध करता है। इससे अधिकारियों को उन बच्चों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिनका टीकाकरण होना बाकी है, साथ ही टीकाकरण कवरेज के लिए आवश्यक फॉलो अप भी किया जा सकेगा। स्कूल प्रमुखों को नए ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं से परिचित कराने के साथ ही स्कूल स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ईटानगर में कक्षा 5वीं और 8वीं से स्टेट बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में नवनिर्मित अरुणाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड परीक्षा पोर्टल को लेकर हेडमास्टर्स एवं हेड टीचर्स के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण से स्कूल प्राधिकारियों को पोर्टल को बेहतर ढंग से समझने और परीक्षा से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 138वीं बटालियन ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम CAP 2026-27 के तहत ईटानगर स्थित चिंपू में बुनियादी सिलाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। 8 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य बटालियन के कार्यक्षेत्र में रहने वाले स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों में कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार और आजीविका के अवसर को उपलब्ध कराना था। विश्वविद्यालय परिसर में HIV एड्स के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ ही विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स ने NSS सेल्स द्वारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से आज विश्वविद्यालय परिसर में 5 किलोमीटर के रेड रन मिनी मैराथन का आयोजन किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, अंजाव, नामसाई और चांगलांग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही किनो याकप को लद्दाख में 7,077 मीटर ऊंची माउंट कून चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। माउंट कून जांस्कर पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियों में से एक है और अपनी तकनीकी चुनौतियों तथा कठिन मौसम परिस्थितियों के लिए जानी जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय हागे आनी। Governor Lieutenant General Retired Kirti Parnaik has extended his warm greetings to the people of the state, particularly the Khoa community, on the auspicious occasion of Pham Kho Soai. He expressed hope that the festival would usher in a season of abundant harvest, prosperity and well-being for all. In his message, the Governor said that agrarian festivals are the lifeblood of tribal societies, reflecting the deep bond with nature and the land that sustains them. He said that Pham Kho Soai is a celebration of harvest and also a vibrant expression of the Khoa community's rich cultural heritage. Chief Minister Pema Khandu today felicitated the state-level Meritorious Students under the Golden Jubilee Meritorious Students Awards for the academic session 2024-25, calling upon the young achievers to remain disciplined, focused and committed to excellence as they prepare to shoulder the responsibility of Arunachal Pradesh's future. Addressing the awards ceremony in Itanagar, Khandu congratulated the awardees and appreciated the support extended by their parents, families, teachers and friends in their academic journey. Highlighting the ongoing reforms in the education sector, the Chief Minister said the state government has been working to restore the quality and effectiveness of government schools by implementing the National Education Policy 2020 and the state's Mission Shikshit Arunachal with the target of achieving its objectives by 2029. A total of 30 state-level toppers from classes 3 to 12 were felicitated at the ceremony, while around 840 students have received the award at various district levels. Minister for Tourism P.D. Sona today chaired the preparatory cum review meeting for the 14th International Tourism Mart 2026 to be held in Tawang. The meeting reviewed key arrangements related to security, transportation, accommodation, logistics, protocol and interdepartmental coordination to ensure smooth and successful conduct of the international tourism event. In a social media post, Sona said that hosting ITM 2026 in Tawang is a significant opportunity to showcase the tourism potential, culture and hospitality of Arunachal Pradesh to a wider national and international audience. The event is being jointly organized by the Union Ministry of Tourism and Department of Tourism, Government of Arunachal Pradesh. The state-level program on the launch of the U Mentor app Anemia Mukt Bharat Abhiyan and RBSK 2.0 began at the State Banquet Hall, Itanagar today. The program includes two

0: फिल्म गुंजन सक्सेना के इसी गीत के साथ कार्यक्रम देशभक्ति गीत यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
2: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी देखा है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या बचपन वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं। बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का समय आ गया। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है। तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई वेब पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानी।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म थानेदार से अमित कुमार, आशा भोसले और रिमा लहरी की आवाज में। शब्द रचना है इंदिवर के व संगीत है बप्पी लहरी का। इस गीत की हमें फरमाइश की है मधुबन कॉलोनी तवंग से आप है राहुल, और SBI बैंक कॉलोनी तवांग से आप है ड्रेमा तेंजिन देदिन और येशी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म दीवाना से कुमार सानू की आवाज में। शब्द रचना समीर के व संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत की हमें फरमाइश की है युंग मदुंग से। आप संगीत श्रृंग टशी ड्रमा चुम और नमगे इटुन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं, आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सरगम से। शब्द रचना है आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है लोगर ठाकुरन वाला फिरोजपुर पंजाब से। आप है स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। और निमनाबाद जिंद हरियाणा से आप है जसवीर सिंह अरोरा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म हाथ की सफाई से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है गुलशन बावरा की व संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की हमें फरमाइश की है पजोनिया जलौन उत्तर प्रदेश से। आप हैं सत्येंद्र कुमार चंचोलिया आदर्श सार्थक और अलौकिक चंचोलिया, और मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म ड्रीम गर्ल से। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से आवे सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्राखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह और जनकपुरी सहारनपुर से आप है जॉन डिकास्ट्रो, पर्ल डिकास्ट्रो, रोजी डिकास्ट्रो और विलीज डिकास्ट्रो।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि ठीक 9 बजे न्यूज़ एट 9।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकल के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डाली जाए आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। ईस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर 13 वर्षों बाद दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालेंका का सामना जैसिका पेगुला और कोको गॉफ का मुकाबला अलेना रैबकिना से होगा। तो कार्यक्रम को शुरू किया जाए आज क्रिकेट के मैदान की खबरों के साथ। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज दुबई में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर और 5 गेंद में 1 विकेट खोकर के 53 रन बना लिए थे। इससे पहले बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। और इस मैच पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी विशेष। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान पर जीत दर्ज कर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। विशेष, शुरुआत में ऐसा लगा था कि स्मृति के जल्दी आउट होने के बाद टीम की पारी लड़खड़ा सकती है, लेकिन एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई।
1: बिल्कुल शक्ति, स्मृति मंधाना 9 रन के स्कोर पर, टीम का जब स्कोर 9 रन था तब आउट हुई तो समर्थकों में काफी चिंता देखी जा सकती थी, लेकिन अब शेफाली वर्मा और प्रतिका रावल के बीच ये जो साझेदारी हो रही है ये अब 44 रन की हो चुकी है 36 गेंदों पर, और शेफाली वर्मा 25 गेंदों पर 32 रन बनाकर खेल रही हैं जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। वहीं प्रतिका रावल 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए 1 छक्के और 1 चौके के साथ 18 गेंद पर 18 रन बनाकर खेल रही हैं। बांग्लादेश की तरफ से सुल्ताना खातून ने 1 विकेट लिया है। तो ये इस मुकाबले में भारतीय टीम की सधी हुई शुरुआत कही जा सकती है, जहां पहले काफी कम रन बने थे लेकिन अब 8 ओवर में 53 रन बना लिए हैं 6.62 के रन रेट से, जो कि एक काफी अच्छी शुरुआत कही जा सकती है।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत। लेकिन भारत के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में जो चिंता का सबसे बड़ा सबब रहा वो है मध्यक्रम और निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों का बड़े

0: स्कोर ना करना टीम, कई खिलाड़ियों को देखा गया, कई बार हरमनप्रीत को वो शुरुआत मिली या फिर प्रतिका को थी शुरुआत मिली, लेकिन उसको एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना टीम के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हुआ शुरुआत के, खासकर दोनों मुकाबलों में थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ। इसके इतर गेंदबाजी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी की बात अगर की जाए खासतौर पे, जिन्होंने अपने आंकड़ों से अपनी गेंदबाजी से साबित किया है, तो बांग्लादेश के सामने कह सकते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला यहाँ पे भारत को जरूर मिलेगा। तो भारतीय टीम किस मोर्चे के लिए कितनी तैयार नजर आती है?
1: अगर भारतीय टीम के अभी तक सफर की बात करें शक्ति, तो भारतीय टीम के सभी प्रतिद्वंदियों को काफी सफर करना पड़ा है इस टूर्नामेंट में, वो भारतीय गेंदबाजी के दम पर, क्योंकि जिस डोमिनेटिंग अंदाज से भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया है कोई भी टीम भारत के सामने टिक नहीं सकी है और 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। हालांकि आज बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छा मुकाबला देखने की उम्मीद है, क्योंकि एक बांग्लादेश ने भी अच्छा शुरुआत ली है पहला विकेट लेकर, और इसी के साथ अब भारतीय टीम अगर ये सेमीफाइनल मुकाबला जीतती है तो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से फाइनल में भिड़ेगी।
0: जी बिल्कुल, और अगर हमने भारत की बात की तो दीप्ति शर्मा इस टूर्नामेंट में अब तक 4 मैचों में 8 विकेट, जबकि श्री चरणी 7 विकेट ले चुकी हैं। और इस पे सबसे खास है कि दीप्ति शर्मा का जो एवरेज है वो पौने 2 का है, यानी 1.75, यानी कि बहुत किफ़ायती रही हैं, मात्र 14 रन दिए हैं। और वो पहले मैच का शानदार स्पेल जहां पे सिर्फ विकेट उनके खाते में थे और कोई रन नहीं दिया, और देखा जाए तो प्रेमा रावत ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है, नंदिनी शर्मा ने किया है, तो भारतीय गेंदबाजों से आज उम्मीद होगी कि वैसी ही लय बरकरार रखें और इस टूर्नामेंट में भारत के लिए फाइनल का रास्ता और क्लियर करें और भारत महज 2 कदम दूर है और उस 2 कदम की दूरी को टीम पाटने का काम करे। और अब महिला एशिया कप के बाद बात की जाए दलीप ट्रॉफी की। ईस्ट जोन की टीम ने 13 वर्षों बाद दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन को चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर विजेता घोषित किया गया।
2: ईशान किशन के शानदार दोहरे शतक की बदौलत पूर्वी क्षेत्र की टीम ने तीसरी बार दलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इससे पहले टीम ने वर्ष 2012-13 में आखिरी बार ये खिताब जीता था। फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए पूर्वी क्षेत्र ने पहली पारी में 708 रन का स्कोर बनाया। कप्तान ईशान किशन ने 30 चौके और 7 छक्के की मदद से 270 रन की यादगार पारी खेली। वहीं कुमार कुशाग्र ने 101 और शिखर मोहन ने 85 और अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में दक्षिण क्षेत्र की टीम कप्तान तिलक वर्मा की 99 रन की पारी के बावजूद 336 रन ही बना सकी। तिलक के अलावा देवदत्त पटिगल ने 62 और चामा मिलिंद ने 43 रन बनाए। गेंदबाजी में पूर्वी क्षेत्र की ओर से मुकेश कुमार ने 3, मोहम्मद शमी, कुरैशी और शिखर मोहन ने 2-2 विकेट लिए। पूर्वी क्षेत्र को पहली पारी के आधार पर 372 रन की बढ़त हासिल हुई। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र ने फॉलो ऑन देने की बजाय दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने दूसरी पारी में मैच ड्रॉ होने से पहले 7 विकेट खोकर 388 रन बनाए। ईशान किशन ने दूसरी पारी में भी 80 रन की पारी खेली। वहीं मोहम्मद कुरैशी 116 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी में हासिल बढ़त के आधार पर पूर्वी क्षेत्र को विजेता घोषित किया गया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच और तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा लेकिन जीत ईस्ट जोन के हाथों, और कह सकते हैं कि कप्तान ईशान किशन की वो शानदार पारी जो शायद ये टीम और ईशान किशन वर्षों तक याद रखना चाहेंगे विशेष।
1: बिल्कुल शक्ति, ईस्ट जोन ने ये खिताब जो है 13 साल बाद जीता है। इससे पहले इस टीम ने 2012-13 में ट्रॉफी उठाई थी और ईशान किशन जो जिस भी टीम की कप्तानी की कमान संभाल रहे हैं उसको फाइनल खिला देते हैं। झारखंड में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टीम को फाइनल खिलाया और पहली बार खिताब जिताया, उससे लेकर अब तक का सफर जो रहा है बहुत ही शानदार रहा है। और इस मुकाबले में जो बल्लेबाजी उन्होंने करी है बहुत ही ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करी है। पहले इनिंग में 270 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 80 रन बनाए, तो 350 रन उन्होंने अकेले ही बना दिए और वहां साउथ जोन की जो पूरी टीम है वो सिर्फ 336 रन ही बना सकी। इस फाइनल की एक खास बात यह भी रही कि दोनों कप्तानों ने शानदार प्रदर्शन किया शक्ति, क्योंकि ईशान किशन की बात तो हम कर ही रहे हैं लेकिन तिलक वर्मा जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल मुकाबले में भी 99 रन की पारी खेली, अपनी टीम की तरफ से वो अकेले योद्धा की ओर साबित हुए। जो ईशान किशन है उनका उनको एक मलाल जरूर रहेगा इस मुकाबले में कि वो 320 रन का जो रिकॉर्ड था रमन लांबा का उसको तोड़ने से

0: थोड़ा चूक गए, और ये जो उन्होंने उपलब्धि हासिल करी है बतौर कप्तान, ये बेहद सराहनीय।
1: जी बिल्कुल, आपने ईशान किशन और तिलक वर्मा की बात की, और तीन मुकाबले खेले, पांच इनिंग में 409 रन बनाए ईशान किशन ने, और दो मैचों की तीन इनिंग में 266 रन तिलक वर्मा के। तो ये दोनों खिलाड़ियों ने सफेद जर्सी और लाल गेंद के सामने खुद की प्रतिभा को साबित किया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ईशान किशन बतौर विकेटकीपर बात होती है, बतौर बल्लेबाज बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने दावेदारी की है कि ईशान किशन बतौर कप्तान भी बात की जाए। क्रिकेट के मैदान के बाद अब रुख निशानेबाजी का। दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने आज एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा और मिली शाह की तिकड़ी वाली भारतीय टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक, जबकि निशानेबाज मोना ने इसी स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में रजत और अवनी लेखरा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं राजेश निंदागुड़ी, आनंद कृष्णा और स्वरूप उनारकर की भारतीय पुरुष टिकड़ी ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय टीम ने 1856.3 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, और इसी के साथ ही देखा जाए तो भारत ने आज एक और टिकट अपने लिए, पहला टिकट 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स के लिए कन्फर्म कर लिया है, जो कि मिला है अवनी मोना को। मोना ने पहली खिलाड़ी बन गई है 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स का टिकट पाने वाली। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
2: गत विजेता भारत ने मैच की शुरुआत से ही पाकिस्तान की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत ने मैच के 7वें मिनट में ही पहला गोल करते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। भारत को ये सफलता पूजा साहू ने दिलाई। इसके ठीक 2 मिनट बाद रोशनी एंड ने भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अटैक जारी रखा और अगले 5 मिनट में भारत ने 3 और गोल दागे। तनुश्री दिनेश काडू ने 11वें, सुखवीर कौर ने 13वें और सानिका चंद्रकांत माने ने 13वें मिनट में गोल किया। धमाकेदार पहले हाफ के बाद दूसरे हाफ में भारत का अटैक और धारदार हो गया और भारत ने इस हाफ में 5 और गोल किए। भारत ने हाफ टाइम तक 10-0 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद 39वें मिनट में मधु सिदार ने एक और गोल किया और 1 मिनट बाद सुप्रिया ने भी मैच का अपना पहला गोल दागा। इसके बाद पूजा मलिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49वें और 51वें मिनट में लगातार 2 गोल किए और अपनी हैट्रिक पूरी की। कृष्णा शर्मा और बिनिमा धन ने भी गोल किए, जिससे टीम की बढ़त लगातार बढ़ती गई। सुप्रिया ने 54वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा, जबकि रोशनी ने मैच के आखिरी मिनट में गोल करके अपना दूसरा गोल पूरा किया और भारत की 19-0 की शानदार जीत पर मुहर लगा दी। भारत ने जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीमों को हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था। अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से खेलेगी। मौजूदा चैंपियन भारत लगातार तीसरी बार जूनियर महिला एशिया कप का खिताब जीतने से सिर्फ 2 जीत दूर है। टीम ने 2023 और 2024 में भी ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक शानदार जीत, जहां जब भारतीय टीम उतरी तो एक के बाद एक गोल की बारिश पाकिस्तान टीम के ऊपर, और जब तक पाकिस्तान की टीम ये समझ पाती कि आक्रमण कितना जोरदार है, स्कोर बोर्ड पे स्कोर 19-0 था और भारत ने एक तरफा ढंग से इस मुकाबले को जीता और ये बताया कि क्यों इस प्रारूप में, इस वर्ग में भारत इतना सफल टीम है और क्यों भारत ने पिछले 2 बार ये खिताब जीता है। और महज 2 कदम दूर भारतीय टीम अब अपने लगातार तीसरे खिताब से, खिताबों की हैट्रिक से। और अब अंत में कार्यक्रम में बात की जाए US ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जिसके सिंगल्स सेमीफाइनल की तस्वीर एकदम स्पष्ट हो चुकी है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे, जहां पे आर्यना सबालेंका होंगी, जैसिका पेगुला होंगी, कोको गॉफ होंगी और राबाकीना, ये चारों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और विशेष कल से मुकाबले शुरू हो रहे हैं, खिताब से दूरी बहुत कम है, एक एक दो दो मुकाबलों की। किस किस खिलाड़ी ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है और क्या तस्वीर है?
3: शक्ति, अगर महिला सिंगल्स की बात करें तो सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की 6ठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराया था, और पेगुला ने हम वतन खिलाड़ी एम्मा नवारो को मात दी थी। वहीं कोको गॉफ ने रूस की 5वीं वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा को हराया, और रायबरकीना ने चीन की झेंग किन वेन को

0: बाहर का रास्ता दिखाया था। तो महिला सिंगल्स में काफी कड़े मुकाबले हमको देखने को मिले, और अगर सेमीफाइनल्स की बात करें तो अरेना सबालिंका का मुकाबला जो है जेसिका पेगुला से होगा, वहीं कोको गॉफ का मुकाबला एलिना रायबकीना से खेला जाएगा। इन दोनों मुकाबलों का विजेता का फाइनल मुकाबला जो होगा वो 13 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो फ्रांसिस टियाफो ने अपने ही देश के एलेक्स मिचेलसन को हराया था। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेन शेल्टन ने बड़ा उलटफेर करते हुए कार्लोस अल्कराज को मात दी थी। अलेक्जेंडर ज्वेरेव और कैरोन कचनोफ ने भी अलग अलग मुकाबलों में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। और अब जो है मेंस सिंगल्स में भी काफी कड़े मुकाबले हमको देखने को मिलेंगे, जहां फ्रेंच ओपन 2026 के विनर अलेक्जेंडर ज्वेरेव कैरेन कचनोफ के सामने खेलेंगे, और फ्रांसिस टियाफो जो है वो बेन शेल्टन से मुकाबला करेंगे, जिन्होंने हाल ही में कनाडा ओपन का टूर्नामेंट जीता था। तो काफी कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे, और पुरुष सिंगल्स का भी फाइनल जो है वो 13 सितंबर को ही खेला जाएगा।
1: जी बिल्कुल, तो 13 सितंबर को फाइनल होगा कि कौन खिताब को उठाता है, वर्ष का ये चौथा ग्रैंड स्लैम। और आपने बेन शेल्टन की बात की, सबसे अधिक मेरे को लगता है नजरें उन पे रहने वाली हैं, क्योंकि वो जीत जो क्वार्टर फाइनल में आई है डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज के ऊपर 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 से शायद उनको फेवरेट्स बना देगी। और अंत में चलते चलते एक बार विशेष स्कोर बोर्ड पे वापस नजर डाल दी जाए, भारत और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मुकाबला जारी है, क्या स्थिति है इस समय?
0: अगर भारत और बांग्लादेश के मुकाबले की बात करें शक्ति, तो 10 ओवर का खेल हो चुका है, जहां भारत ने 59 रन बना लिए हैं और 2 विकेट गंवा चुकी है। स्मृति मंधाना पहले ही आउट हो गई थी, अब प्रतिका रावल भी पवेलियन लौट चुकी हैं 24 गेंदों पर 20 रन बनाकर, और ये विकेट रबाइन खान ने लिया है।
1: जी बिल्कुल, और लोगों को बता दें कि शेफाली वर्मा अभी भी क्रीज पर डटी हुई है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते, और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है, और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
3: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future.

0: matter. This spirit must now travel beyond Earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी

0: an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। 2 दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस

0: और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पैरिस